अभी आप सुन रही थी श्री रामचरित मानस से भक्तिमय पाठ। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, 7:10 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा बात होगी छत्रपति संभाजी जयंती के बारे में और साथ ही असगर अली की पुण्यतिथि के बारे में जानकारी साझा करेंगे। रमणीक स्थल के अंतर्गत सैर करवाएंगे आज आपको पब्बर घाटी की और पर्यावरण में जानकारी का विषय आज रहेगा मोगरे का फूल। 7:40 पर सुनिएगा हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर श्रोता आज सुनेंगे फिल्म काला पत्थर के गीत। गीतांजलि कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम सुबह 9:00 और 9:00 से 10:00 तक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं।

10 बजे फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर हिमाचली गीत और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 11 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे। 11:05 पर आज कुछ पंजाबी गीत सुनवाए जाएंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं 11:30 पर। दोपहर 12 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए के प्रसारण का। 12:30 पर बहनें अपना कार्यक्रम मिंजरा सुनेंगी। कार्यक्रम में आज बातचीत जिस विषय पर की जाएगी वो विषय है स्वरोजगार अपनाकर महिलाएं बने आत्मनिर्भर और सशक्त। अनाज भंडारण में जौ के भंडारण के बारे में बताया जाएगा और खानपान में आज जानकारी दी जाएगी नींबू के शरबत के फायदों के बारे में और उसके उपयोग के बारे में। दोपहर 1 बजे समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 1:10 से विविध भारती के कार्यक्रमों का लुत्फ आप उठा सकते हैं जिन्हें हम आकाशवाणी मुंबई से रिले करेंगे। इसी दौरान दोपहर 3 बजे प्रादेशिक समाचार 3:05 पर जिला की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। शाम 5 बजे समाचार आप सुन सकते हैं जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 5:10 पर आज फिल्मों से कुछ भजन सुनवाए जाएंगे। युवा मंच कार्यक्रम युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:30 पर आज बातचीत का विषय रहेगा अनुशासन और निरंतर प्रयास का महत्व। 6:30 पर किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजा गराइंदियां प्रसारित किया जाएगा। 7 बजे समाचार आकाशवाणी

0: दिल्ली से रिले किए जाएंगे 7:10 पर कार्यक्रम किसानवाणी में। आज की बात का विषय रहेगा डेयरी का कार्य और मिश्रित खेती। 7:42 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। 8 मिले जुले गीतों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम सबरस में देशगान 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज श्रोताओं को सुनवाएंगे फिल्म अभिनेता विक्की कौशल द्वारा अभिनीत फिल्मों से कुछ गीत। 9:30 पर आज कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें प्रसारित की जाएंगी। 10 हिमाचली गीतों लोकगीतों का आनंद श्रोता ले सकते हैं। और सभा के अंत में रात 10:30 पर चित्रपट संगीत में लुत्फ उठाइएगा पुराने फिल्मी गीतों का। समाचार सुने जा सकते हैं रात 11 हिंदी में और रात 11:05 पर अंग्रेजी में। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्ण प्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मंत्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केंद्रीय मंत्रिसभा सभायाः अनंतरं प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति इति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केंद्रीय मंत्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्यप्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदञ्च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 UAE नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमंत्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमंत्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEET UG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्राम नाशिकतः, अन्ये अनेके च संकिताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड UGCC इति समान नागरिक संहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा इत्येषः मुख्यमंत्री रूपेण द्वितीय कार्यकालस्य प्रथम मंत्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसार माध्यमान् संबोधयन् घोषणैः अकरोत्। सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य सीबीआई इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीण सूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः। उत्तरप्रदेशे धूलिप्रभञ्जनेन सह विद्युत्प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गतचतुर्विंशतिहोरासु त्रिचत्वारिंशत् जनाः मृताः। भदोही मण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचना अस्ति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण आलुकं पलाण्डुः फल शाकानि तैलबीजादिभिः सह अन्यधान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः। अन्ते प्रियाः श्रोतारः, क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य

कार्यक्रम सुप्रभात में सभी श्रोताओं का स्वागत और सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हर सुबह आती है एक नई उम्मीद के साथ और लाती है हमारे दिमाग में कुछ विचार, कुछ सोचें, कुछ उलझने। लेकिन इन उलझनों से हमें बाहर निकलना है और अपनी सोच को हमेशा एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाना है और लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश के साथ कंपैरिजन कम करना है और ग्रेटिट्यूड ज़्यादा करना है। यानी हमें तुलना अपने जीवन की किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम तुलना करते हैं कि उसके पास वो चीज़ है और मेरे पास नहीं, काश मेरे पास भी होती। यही काश हमें नकारात्मक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ाता है और भूल जाते हैं हम हमेशा ग्रेटिट्यूड करना, यानी हम कृतज्ञता जताना, आभार जताना भूल जाते हैं, खास करके भगवान का जिन्होंने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन में जो कुछ भी हमें दिया, और ख़ास करके अपने बड़ों का जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उन सभी का जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं और हमें किसी ना किसी तरह से खुश रखते हैं। और जीवन में हमें खुश रहना है तो ये दो चीज़ें हमें निश्चित रूप से करनी है। एक तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी है, और धन्यवाद हमें हमेशा हर चीज़ के लिए देना है। कभी कभी दूसरों की खुशी को देखकर भी हम उसमें अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। दुख को भूल जाएं और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन वही सफल है, वही एक उत्तम जीवन कहलाता है जिसमें हम खुश रहने की कोशिश करते हैं और नकारात्मकता जो है हमारे जीवन में उसे हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे सभी श्रोता जो हैं वो खुश रहें और संसार में, इस पूरे विश्व में खुशियां ही खुशियां रहें। ऐसा नहीं है श्रोताओं के हमारे कहने से हो जाएगा, लेकिन कोशिश करने में तो कोई परहेज़ नहीं है। दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख के क्षणों में भी हमें कुछ ऐसे पल ढूंढने हैं जिनमें हम खुश रहे हैं, और इन्हीं पलों को जब हम ढूंढ लेंगे तो हमारा जीवन खुशमय बन जाएगा, बिल्कुल कुछ इस गीत की तरह। इस गीत में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी श्रोता खुश रहें, विश्व में खुशियां ही खुशियां हों और सारा संसार जो है खुशनुमा बना रहे।

कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज विशेष की। 14 मई आज की ये तारीख इतिहास के पन्नों में किन कारणों से विशेष रही और किन खास हस्तियों के जन्म और निधन आज के दिन हुए, इस जानकारी में सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो आज ही के दिन साल 1948 में इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की थी। साल 1981 में आज ही के दिन नासा ने स्पेस व्हीकल S-192 लॉन्च किया था। आज ही के दिन साल 1992 में भारत ने तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई विद्रोही संगठन LTTE पर प्रतिबंध लगाया था। बात होता है उन खास हस्तियों की जिनके जन्म हुए आज के दिन यानी 14 मई के दिन। साल 1657 में शोतावाजी के दिन जन्म हुआ छत्रपति सांभाजी भोसले का, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे ये और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। सांभाजी राजे को एक बहादुर, बुद्धिमान और कुशल सेनापति के रूप में जाना जाता है। साल 1681 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठे और स्वराज्य की बाग डोर उन्होंने संभाली। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और स्वराज्य की रक्षा की। सांभाजी महाराज को साल 1679 में मुगलों ने पकड़ लिया और बिरहमी से मार डाला। उनके बलिदान ने मराठों को आत्मसम्मान को बढ़ाया और स्वराज के लिए आगे संघर्ष के लिए उनको मजबूत किया। आज भी उनकी यादें प्रेरणा का स्रोत हैं। आज के दिन साल 1892 में जन्म हुआ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का। प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, आज ही के दिन साल 1883 में इनका जन्म हुआ। और साल 1923 में जन्म हुआ आज के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन का। श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियां हम आगे भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओ सुप्रभात। कार्यक्रम में आज विशेष के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं और श्रोताओ आज ही के दिन साल 1984 में जन्म हुआ फेसबुक के जनक माने जाने वाले मार्क एलियट जुकरबर्ग का। वे विश्व प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के सह संस्थापक और सीईओ हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के से पढ़ाई के दौरान साल 2004 में फेसबुक की शुरुआत की और शुरुआत में फेसबुक एक कॉलेज नेटवर्क था, लेकिन जल्द ही ये दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। मार्क जुकरबर्ग की दूरदर्शिता

0: और तकनीकी क्षमता ने सोशल मीडिया की दुनिया में क्रांति ला दी। वे अपनी युवा उम्र में ही कई तरह के अवार्ड जीत चुके और उन्होंने खूब धन भी इस माध्यम से कमाया और तकनीक उद्योग में एक प्रेरणा स्रोत ये माने जाते हैं। वे परोपकारी कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। जिन हास हस्तियों के निधन हुए श्रोताओं, आज की इस तारीख पे यानी 14 मई में उनकी बात करते हैं। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ साल 1978 में। साल 2016 में निधन हुआ भारतीय मूल के तमिल विद्वान और लेखक कांडास्वामी कुप्पुस्वामी का। और साल 2013 में निधन हुआ इंजीनियर असगर अली का। असगर अली इंजीनियर एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान और लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्रोताओं माफ़ कीजिएगा, केवल इनके नाम पे इंजीनियर शब्द है, लेकिन इंजीनियर तो ये नहीं है, एक भारतीय विद्वान हैं, लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 10 मार्च साल 1939 को। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। असगर अली ने धर्म सुधार और न्याय के मुद्दों पर भी कई किताबें लिखी, जिनमें महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता का उल्लेख भी मिलता है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के संस्थापक भी थे। उनका जीवन समर्पण, सच्चाई और साहस का प्रतीक रहा। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम सुप्रभात में जानकारियां हम श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम श्रोताओं का मनोरंजन भी कर रहे हैं फिल्मी गीतों के साथ। कार्यक्रम में आगे एक गीत श्रोताओं को और सुनवाएंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इसमें श्रोता जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं ने ट्यून किया है इसे आर कार्यक्रम सुप्रभात में जानकारियां हम साझा कर रहे हैं, साथ ही साथ फिल्मी गीतों से श्रोताओं का मनोरंजन किया जा रहा है। श्रोताओं कभी कभी दिल करता है सैर की जाए ऐसी जगह की जहां सुकून हो, शांति हो और पर्यावरण का आनंद हम ले सकें, लेकिन अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण और कभी कभी कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ जिम्मेदारियों के कारण हम अपने मन को मार लेते हैं और नहीं जा पाते। तो चलिए आज आपको घर बैठे बैठे ही हम सैर कराते हैं एक ऐसी जगह की जहाँ आप बैठे बैठे ही आप ये कल्पना कर लेंगे कि आप ऐसी जगह घूम आए जहाँ आपका जाने का मन है। तो दोस्तों चलिए आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल और कलकल बहती नदी की आवाज। जी हाँ, ये स्थान है पब्बर घाटी, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ मुस्कुराती है। ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर चली जाती है, दूर पहाड़ों से आती धूप आपके मन को एक हल्का सा सुकून दे जाती है। यहाँ की हरियाली, सेब के बगान और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। श्रोताओं, पब्बर घाटी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित एक सुंदर और प्राकृतिक क्षेत्र है। ये घाटी पब्बर नदी के किनारे फैली हुई है और अपनी हरियाली, सेब के बागीचों, देवदार के जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। रोहड़ू, हाटकोटी, टिक्कर इसकी प्रमुख स्थान है, साथ ही साथ चांसल दर्रा और डोडरा क्वार जैसे पर्यटन स्थल भी यहाँ हैं। यहाँ का मौसम वर्ष भर सुहाना रहता है, इसीलिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। हाटकोटी में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर भी धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। पब्बर घाटी साहसिक गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग, मछली पकड़ने और कैंपिंग के लिए भी लोकप्रिय है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के कारण पब्बर घाटी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आज की ये रोमांचक पर्यटक भरी यात्रा श्रोताओं को पसंद आई होगी और श्रोताओं ने इस यात्रा को बैठे बैठे ही महसूस किया होगा।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने आकाशवाणी धर्मशाला ट्यून किया है और कार्यक्रम सुना जा रहा है श्रोताओं के द्वारा। सुप्रभात। श्रोताओं, फूल किसे पसंद नहीं और फूलों की खुशबू किसे पसंद नहीं। जी हाँ, फूल मन को लुभाते हैं और कभी कभी मूड भी तरोताज़ा कर देते हैं। और फूल अगर उपहार के रूप में दिए जाएं तो इससे अच्छा और सुंदर उपहार कोई नहीं माना जाता। पर्यावरण के अंतर्गत आज हम फूलों के क्रम में बात कर रहे हैं मोगरा फूल के बारे में। एक ऐसा सुगंधित और मनमोहक फूल जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है और जिसकी खुशबू वातावरण को नहीं मन को भी तरोताज़ा कर देती है। जैस्मिन, जैस्मिनम सिम्बैक, इसको वैज्ञानिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। और अरेबियन जैस्मिन या मेड ऑफ ऑर्लिन भी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल और मीठी खुशबू से पूरे वातावरण को ये फूल भर देते हैं। इसकी सुगंध इतनी प्राकृतिक और शुद्ध होती है, न केवल वातावरण को सुगंधित करती है बल्कि तनाव और मानसिक थकान को भी कम करने में सहायक मानी जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से मोगरा एक महत्वपूर्ण पौधा है। ये मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागण वाले जीवों को आकर्षित करता है, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। ये पौधा हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है और शहरी बागवानी में इसकी बहुत मांग है। यदि हम अपने आसपास अधिक पौधे लगाएं, विशेषकर मोगरा जैसे सुगंधित पौधे और पर्यावरण हितैषी पौधे, तो हमारा वातावरण न केवल सुंदर बनेगा बल्कि स्वच्छ और संतुलित भी रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल देन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और हरियाली को बढ़ावा देंगे। यदि पर्यावरण के अंतर्गत जानकारी मोगरा फूल के बारे में, और चलते चलते श्रोताओं को एक गीत और सुनवा रहे हैं।

श्रोता, ये था आज का सुप्रभात कार्यक्रम। कार्यक्रम आपने सुना अपनी दोस्त नीलम के साथ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब लीजिए सुनिए हिमाचली गीतों लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभप्याग। कार्यक्रम शुभप्याग की शुरुआत श्रोताओं हम कर रहे हैं जन्मजय सिंह गुलेरिया और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: जन्मे जय सिंह गुलेरिया का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा, दिस मे ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। TNC अप्लाई।
0: लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुभ प्याग में और आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए सुनिए, इसे गाया है सुनील राणा ने।

अभी आप सुन रहे थे देशगान एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का। ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री

0: पक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
10: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के

श्रोताओ, एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और आज की फिल्म है साल 1989 में बनी फिल्म काला पत्थर। फिल्म काला पत्थर साल 1989 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की आपदा पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने किया और पटकथा समीर जावेद ने लिखी। चासनाला खनन त्रासदी पर आधारित ये फिल्म निर्देशक चोपड़ा और अभिनेता शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच चौथा सहयोग है। इससे पहले वे दीवार, कभी कभी और त्रिशूल फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए।

0: बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: दो लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
6: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
5: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
6: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
5: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
6: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
5: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
6: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
7: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
8: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है एक ही फिल्म से और आज के इस कार्यक्रम में साल 1979 की फिल्म काला पत्थर के गीत श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं। श्रोता, 9 अगस्त साल 1979 को ये फिल्म रिलीज हुई और 171 मिनट कार्यकारी समय अवधि की ये फिल्म रही। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसे कई फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए।

काला पत्थर फिल्म में श्रोताओं शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा परवीन बॉबी, नीतू सिंह, संजीव कुमार, पूनम ढिल्लो, प्रेम चोपड़ा, परीक्षित साहनी, यूनुस परवेज, मनमोहन कृष्ण, विकास आनंद मैकमोहन, शरत सक्सेना, मोहन शेरी, सत्येंद्र कपूर, गीता सिद्धार्थ और भी कई कलाकारों ने अभिनय किया। श्रोताओं, इस फिल्म के गीतों की समय अवधि की अगर हम बात करें तो इस फिल्म में लगभग 30 से 35 मिनट समय अवधि के आसपास गीत हैं और इस फिल्म के गीतों के लिए संगीत दिया सलील चौधरी ने और गानों को नहीं श्रोता माफ कीजिएगा सलील चौधरी राजेश रोशन ने इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया और किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, पामेला चोपड़ा और एस महान, उषा मंगेशकर जैसे कलाकारों ने इस फिल्म के गीतों के लिए अपनी आवाज़ें दी।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए हाजिर हैं हम लेकर के कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम गीतांजलि में सभी श्रोताओं का स्वागत है और लेकर हाजिर हैं हम आपका अपना कार्यक्रम जहां हर गीत की धुन दिल को छू लेती है और गीतों के शब्द लेकर आते हैं एक कहानी अपने साथ। दोस्तों, जिंदगी कुछ ऐसी ही है बदलते मौसम की तरह। मई का महीना है और गर्मी का महीना हम इसे कहते हैं, लेकिन मौसम जिस तरह से अपना रंग बदल रहा है तो कभी सर्दी का एहसास होता है, कभी गर्मी लगती है। और मस्त महीना इसे और लुभावना मौसम भी हम कह सकते हैं। और ख़ासकर अपने क्षेत्र की हम बात करें तो ऐसा ही मौसम है, और अन्य क्षेत्रों पर भी अगर बारिश हो रही है तो गर्मी से तो राहत मिल ही रही होगी। और ज़िंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही है जिस तरह से मौसम है। एक शेर है, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी दुख होता है तो धूप जैसी हमें गर्मी महसूस होती है, चुभती है गम के टाइम में, और अगर खुश हम होते हैं तो एक ठंडक सी महसूस होती है जैसे ठंडा मौसम होता है, ठीक वैसे ही। और ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी मौसम की तरह अपने आप को बनाना होगा, समय के अनुसार हमें बदलना है। ऐसा नहीं है कि गम ज़िंदगी में है तो हम खुशी ना ढूंढें, और खुशी अगर हम ढूंढेंगे, ढूंढने पर तो कहते हैं भगवान भी मिलता है, तो खुशी हमें मिल ही जाएगी। तो मौसम की तरह बदलिए, लेकिन एक सकारात्मक वे में, एक पॉजिटिव वे में, कि हर किसी के लिए आपका बदलना जो है वो अच्छा साबित हो। और मौसम की तरह ही अपना मिजाज रखिए।

जी हाँ दोस्तों, मौसम का क्या कहें। मौसम सिर्फ आसमान का हाल नहीं होता, ये हमारे दिलों के बदलते एहसासों का आईना होता है। कभी मौसम आशिकाना लगता है तो कभी यही मौसम लगता है लवली लवली।

0: जी हाँ श्रोताओ, लवली लवली मौसम और इस लवली लवली मौसम में आप जुड़े हुए हैं अपने लवली लवली चैनल के साथ FM धर्मशाला 103.4 MHz पर। कार्यक्रम का अगला गीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: FM धर्मशाला से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोता, मौसम बदलता है, उसके साथ बदलती हैं हमारी फीलिंग्स। कभी प्यार की ठंडी हवाएं तो कभी जुदाई की तपिश, और कभी मजबूरी अपने प्यार से दूर रहने की, कुछ इस गीत की तरह।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीतांजलि जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:20 होने को है। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज प्रादेशिक समाचारों के लिए। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। और हमीरपुर के नादौन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित। होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। कोल भारत में करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स हैं। वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोडमैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में आज व कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को भरे गए थे, जिनकी जांच 12 व 13 मई को हुई। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। यह प्रश्नोत्तरी अगले महीने आयोजित होने वाले सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए चयन का पहला चरण है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज

0: को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला का नादौन क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। होटल निर्माण से नादौन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट और शिमला मेटोर फोर लाइन नेशनल हाईवे एवं अटारी हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के जंक्शन पर ब्यास नदी के किनारे स्थित नादौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नादौन शहर के अंतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आधुनिक होटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस होटल के निर्माण से नादौन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नादौन में केवल होटल का निर्माण ही नहीं शुरू करवाया, बल्कि रिवर राफ्टिंग एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए एचआरटीसी की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम प्रबंधन से चुनावी ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ एचआरटीसी ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंध से निषेध कर दिया गया है। यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को सीएक्सएल तथा टीआरक्यू कोटा अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, केएनएच शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस जारी कर पूछा क्यों लिया फैसला, रिपोर्ट तलब। पंजाब केसरी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से लिखता है, नीट का पेपर लीक होना, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, लोक भवन बना ईंधन संरक्षण क्षेत्र, पेट्रोल फ्री संडे लागू। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, केंद्र के तंग करने से नहीं डगमगाएंगे हौसले, दैनिक जागरण का शीर्षक है। मुख्यमंत्री का आश्वासन, जुलाई में होगी जेसीसी, अगस्त में मिलेगी डीए किस्त। दैनिक भास्कर की एक खबर है, कैंटोनमेंट क्षेत्र की जमीन पर केंद्र का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की मांग खारिज, रक्षा मंत्रालय अपने पास रखेगा मालिकाना हक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। और हमीरपुर के नादौन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित, होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है एफएम धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है गीतांजलि। कार्यक्रम में श्रोताओं आज बात हो रही है मौसम पर और मौसम पर बहुत से गीत बने और कितने मौसम हैं, क्या कुछ वो हैं इस गीत में सुनिए।

जी, ये तो बात हुई इस गीत में पतझड़, सावन, बसंत, बहार की, और पांचवा मौसम भी इन्होंने गिनवाया, प्यार का मौसम। और हम चाहते हैं ये प्यार का मौसम तो ता उम्र बना रहे और एक दूसरे के बीच हमारा प्यार यूं ही बना रहे। लेकिन हम आम तौर पर जब बात करते हैं, सामान्य बातचीत जब होती है, तो हम कहते हैं गर्मी, सर्दी, बरसात, तीन ही मौसम ज़्यादातर गिने जाते हैं। और मौसमों में अगर बात करें बरसात की, तो बरसात का मौसम किसे पसंद नहीं। कुछ कुछ होंगे जिन्हें पसंद नहीं होगा, जिनको बारिश में भीगना, कीचड़, ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बारिश को पसंद करते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है और तपी हुई धरती पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और भीनी भीनी वो मिट्टी की सुगंध, वो खुशबू खिड़की पर बैठ जाएँ, तो बारिश की बरसती बूंदें और चाय का प्याला अगर हाथ में हो और ट्यून इन किया हो आपने FM धर्मशाला 103.4 MHz पर, तो क्या ही बात है।

0: जी श्रोताओं, कातिल सा मौसम है और डर है कि कहीं दिल ना खो जाए। दिल खोए या ना खोए, लेकिन आप कभी कभी खो जाइए और देखिए कि कौन है जो आपको ढूंढते हैं। और जो लोग मतलब से जुड़े हैं वो आपको ढूंढेंगे नहीं, और जिन लोगों के दिल के तार आपसे जुड़े हैं, जिन लोगों पर है आपका कुछ जादू, वो आपको ढूंढते हुए आपके पास खिंचे चले आएंगे इस गीत की तरह।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जी हाँ श्रोताओ, ये है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। श्रोताओ, धर्मशाला का ये सुहावना सा मौसम है आज, और ये मौसम ऐसी ही खुशनुमा सुहावना बना रहे क्योंकि आज IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का 58वां मैच खेला जा रहा है, खेला जाएगा शाम को 7:30 से। ये मैच आप देखेंगे पंजाब किंग्स 11 और मुंबई इंडियंस के बीच ये मैच खेला जाएगा धर्मशाला के बेहद ही खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। और दो टीमें, दमदार टीमें आपस में भिड़ेंगी और देखें किसकी जीत होती है। और इस गीत को आप सुने, साथ साथ इस गीत का आनंद लें और शाम को आनंद लीजिएगा मैच का। मस्तानी से मौसम के बीच ये मैच आप देख सकते हैं शाम 7:30 पर। अगर

जी हाँ श्रोताओं, नो डाउट हमारा दिल हमारे श्रोताओं का है, हमारे दिल की धड़कनें चलती हैं हमारे श्रोताओं के कारण, और हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं तो हमारा दिल हमेशा यूं ही धड़कता रहेगा। मौसम पर बात हो रही है, मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, बसंत बहार और कभी बारिश का मौसम आता है। आपको भी अपने आप को बदलना है, जी हाँ बिल्कुल बदलना है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल नहीं बदलना है, जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन अपने अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बदलिए। किसी बात पर गुस्सा आता है तो उस गुस्से पर प्यार की बारिश की बूंदें फेंक दीजिए। किसी के लिए दिल में हैं कुछ बुरी भावनाएं, गलत भावनाएं हैं तो उन पर प्यार की गर्मी का मरहम लगा दीजिए। इस तरह से कुछ कुछ खुद को बदलिए मौसम की तरह, क्योंकि मौसम बदलते रहेंगे लेकिन खुद हमें वैसे ही रहना है, लेकिन अपनी नेगेटिव चीज़ों को ज़रूर बदलना है।

मौसम चाहे चला जाए लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर आज थमते हैं और ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है फिल्म संगीत के साथ। अब हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए। आरजू फिल्म का गीत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू अलके याग्निक ने इस गीत को आवाजें दी हैं।

0: आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आरजू फिल्म से अभी आपने सुना। आवाजें अलके अग्नि कुमार सानू की। आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस मे ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।

0: बरसात फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। समीर का लिखा, नदीम श्रवण के संगीत से सजा, कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: तब पहाड़ों की कली खिलती है, तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी मैं

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:00

30 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है हिमाचली गीत और लोकगीत। पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रताप चंद शर्मा और राकेश शर्मा की आवाजों में।

0: में ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन ईएमआई ऑफ जस्ट रुपीज 899 पर मंथ.
1: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड.
0: हरी लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल. विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम. पीएनसी अप्लाई.
2: नेक्सा
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही. इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा. और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000. तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए. मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू. टीएनसी अप्लाई.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
4: ढोल, नगाड़ों, शहनाई और करनाल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाए लोकगीतों को सुनने का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से. मैं हूं आपके साथ माया. अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं पिंकी और साथियों की आवाज़ों में.

0: अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन अब जे एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
0: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
2: हमारे हिमाचल के लोकगीत पहाड़ी संस्कृति, प्रकृति, प्रेम, त्योहारों और लोक जीवन को दर्शाने वाले हैं। इन लोकगीतों को सुनने का अपना एक अलग ही आनंद है। तो अगले लोकगीत को सुनने का आनंद लीजिए लीला भंडारी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत और लोकगीत FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजे हैं, अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में

0: आज वह कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को भरे गए थे, जिनकी जांच 12 व 13 मई को की गई। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोडमैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाले पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। हमीरपुर जिला का नादौन क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस होटल के निर्माण से नादौन और इसके पास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट और शिमला मेटोर 4 लाइन नेशनल हाईवे एवं अटारी हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के जंक्शन पर ब्यास नदी के किनारे स्थित नादौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नादौन शहर के अंतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आधुनिक होटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस होटल के निर्माण से नादौन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नादौन में केवल होटल का निर्माण ही नहीं शुरू करवाया, बल्कि रिवर राफ्टिंग एवं एडवेंचरल स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए एचआरटीसी की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम प्रबंधन से चुनाव ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ एचआरटीसी ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब लीजिए लुत्फ, उठाइए पंजाबी गीतों का। शुरुआत कर रहे हैं दिलेर मेहंदी के इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं। आप सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
3: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
3: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
3: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
3: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
3: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
3: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
3: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
3: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
3: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
3: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
3: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
3: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
3: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है
3: एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
8: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों

0: शीतलता का सन्नाटा और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड।

0: जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
1: कहां सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
0: अच्छा वो क्या?
1: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
2: हाँ दूसरा क्या?
1: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज में हो ताया जी?
1: हाँ पुत्तर।
0: छुट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था।

0: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
4: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
5: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
5: जी।
1: अच्छा।
4: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: जाइएगा साहब, हाँ साहब, ठीक जाइए साहब।
1: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
2: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
2: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।

0: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह है।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। इस गीत के जरिए नमन है उन वीर शहीदों को जिन्होंने हमें आज़ादी का ये तोहफा दिया।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम, कैलाश खेर और साथियों का गाया। सैनिकों के लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश ये गीत दबंग फिल्म से।

वांटेड फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाजें शेयर खुशहाल और शान की। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें के और तुलसी कुमार की हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म रेडी से।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप जुड़े हुए हैं। ये गीत अभी आपने सुना रेडी फिल्म से के और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम के अंतिम पेशकश ये गीत दबंग 2 फिल्म का ये गीत है, इसे गाया है तुलसी कुमार और सोनू निगम ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम मिंजरा।

स्वागत सारे श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरां च। भैनों अज्जे दे इस कार्यक्रम में असां तुहाडे कन्ने तुहाडी अपनी रेडियो सखी माया सारे श्रोता सखियों जो साड़ी तरफी ते प्यार भरी राम राम। भैनों मौसम की गल करिए तां दिखा मौसम वक्ते वक्ते पर जिहड़ा से बदलौंदा रहिंदा, कदी गर्मी कदी सर्दी ते कदी बरखा तूफान ते मौसम दा प्रभाव असां मनु पर तां पौंदा ही पौंदा, पर कन्ने पेड़ पौद्यां पर ते पशु पक्षियों पर जिहड़ा से इसका सबना का ज़्यादा प्रभाव पौंदा। इस खातर मौसम के हिसाब कन्ने असा जो अपने खाने पीने ते रहन सहन पर जड़ा से बदलाव करना बड़ा जरूरी है, ताही असा अपने आपे जो बीमारियां का जड़ा से बचाई के रखी सकते, ताही असा हर कम आसानी के करी सकते, ते चाहे घरे दे काम हो

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक बारी फिर स्वागत है सदी श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरन च। ताजा सा पहले गल्ला करनी है कि स्वरोजगार अपनाई करी कि असा आत्मनिर्भर ते सशक्त बनी सकदी हां। तो दिखा अज दे जमाने च असा जना सदा आत्मनिर्भर ते सशक्त बनना जड़ा से समाज की सबना का बड़ी जरूरत है। जालू असा पढ़ी लिखी करी, शिक्षित होई करी, स्वरोजगार जो अपनांदे तां ना सिर्फ अपने आपे जो अगे बधांदे असा, बल्कि अपनी स्थिति जो भी मजबूत कर दे, कन्ने परिवार की आर्थिक स्थिति जी है सह भी मजबूत होंगी, तो समाज के विकासे च महत्वपूर्ण योगदान जड़ा सह भी असा दे सकते। स्वरोजगार यानी अपने कौशल ते मेहनत के हिसाबे कन्ने अपने आप रोजगार जड़ा सह प्राप्त करना। असा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, हस्तशिल्प, ऑनलाइन कम, टिफिन सेवा, ट्यूशन देना ते होर भी छोटे व्यवसाय जड़े से शुरू करके असा आत्मनिर्भर बनने जो असा जो जड़े से कोई नहीं रोकी सकता। तो इस कन्ने असा जो दूजे पर निर्भर होने की जड़ी सह भी जरूरत नहीं रहती, तो असा दा आत्मविश्वास जड़ा सह भी बढ़ता। असा गरीबी करी ही अपना कोई भी काम जड़ा से करी सकती हाँ। जिस भी कम्मे च असा जो रुचि हो, जिस भी कम्मे च असा निपुण हो, उस कम जो असा करी सकती हाँ। जियां कि अगर सिलाई कढ़ाई बुनाई करने का शौक है तो दिखा सा इन्ह कम जो खरे कन्ने सीखी करी, प्रशिक्षण ले करी, घरे बेही करी ही इन्ह कम जो करी सकती हाँ। घरे के कम भी हो जाते तो अपना जड़ा से सिलाई बुनाई का कम जड़ा सह भी होंदा रहिंदा। इस कम्मे जो बधाई करी असा 4 पैसे भी कमाई सकते। पापड़, अचार, सेवइयां बनाई करी दिखा अज कितनिया असा दियाँ जड़ियाँ भैन इन से घरे का ही चीज़ा जो बेची करी जड़े पैसे कमा दिया है ना। अज ऑनलाइन असा इन्हें समान जो बनाई करी बेची भी सकते, बस अपना पता ते फोन नंबर जड़ा से दे करी असा करे बेही करी ही समान जड़ा से बेची सकते, कम करी सकते। अज कितनिया पैना डेयरी का कम करा कर दी हैं, है ना। ऑनलाइन बच्चों जो जड़ी इनसे पढ़ा दिया भी हैं, है ना, ट्यूशन दिया कर दिया हैं। दूध, घी, मक्खन घरे बेकरी ही बेचा कर दिया हैं। पंजीरी बनाने का कम भी अज कितनिया पैना जड़ी इनसे घरे बेकरी करा कर दी हैं, कहने ऑनलाइन तिना जो जड़ा है से बेची करी पैसे कमा दिए हैं। बस जड़ा भी कम करना हो उस कमे से असा माहिर होना चाहिए। दूजा जो असा का कम जड़ा से पसंद होना चाहिए। घरे का सिलाई करके रेडीमेड कपड़े बनाई करी भी असा इस तरीके का व्यवसाय जड़ा से शुरू करी सकती है। दिखा शुरू पर हर कम करने वास्ते जड़ी असे जरूर चुनौती होंगी, पर जालू असा का कम चली पाँगा तो कम करना जड़ा से होर भी आसान हो जाता। जालू औरत अपना व्यवसाय शुरू कर दिया तो औरतों के हाथ से दिखा 4 पैसे भी आते, तो इस कन्ने उन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति जी है सह भी

भी सुधार होंदा ते परिवार जो जेड़ा से एक बेहतर जीवन असा दे सकदे। जलू असा औरत आर्थिक रूप च जड़ी असं मजबूत होंगी है तो घरे की जिम्मेदारियों भी बराबर योगदान दे सकदी हैं ते असा अपने सारे सपन जो जड़ा तेरा जो पूरा करी सकदे। महिला सशक्तिकरण करने दिखा समाज च समानता ते सम्मान की भावना जड़ी असं बदती। अज महिलाएं स्वयं सहायता समूह कन्नै जुड़ी करी भी कितना जड़ा से काम करा करदी हैं, अपने व्यवसाय जड़े शुरू करा करदी हैं, अपने पैरों पर खड़ोआ करदी हैं। दिखा सा औरत परिवार ते समाज की जड़ी असं शक्ति होंगी। अगर असा जो शिक्षा मौके ते सम्मान मिले तो दिखा सा क्षेत्र च सफलता जड़े असं हर क्षेत्र च सफलता हासिल करी सकती है, क्योंकि एक आत्मनिर्भर महिला ही मजबूत परिवार ते विकसित राष्ट्र की जड़ी असं आधार बनी सकती है। इस खातर असा सारियां भैणां जो स्वरोजगार वास्ते अगे बढ़ना चाहिदा ताकि असा सारी आत्मनिर्भर सशक्त ते सम्मानित जीवन जड़ा से जी सकन। तां अगे असा जानकारी तुसां नूं होर भी सांझा करनी है, होर भी गल्लां लाणियां हैं, पर सुन लैंदे इक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक बारी फिर स्वागत है सदी श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरें च। पहले असं गल की स्वरोजगार पर, हूँ असं गल करनी है अनाज भंडारण पर। जी हाँ भैनों, अनाज कोई भी हो उसकी संभाल करना जोड़ा से बड़ा जरूरी है। अनाज असा दे जीने का एक जरूरी खाद्य पदार्थ है, तो गेहूँ, चौल, मक्की, दालां असा दे दैनिक भोजन का जोड़ा से मुख्य आधार हैं। इस खातर सारे समाजे का सही सारे अनाजे का सही भंडारण करना जोड़ा से बड़ा जरूरी है। अगर अनाज जो सुरक्षित तरीके कने नहीं रखा जाए तो उस कीड़े, नमी, उल्ली, घुण, पटड़ी जी असें लगी पौधे, इन्हों कीड़िया के लगने कने अनाज जोड़ा से स्ताबी खराब हो जाता। तो अज असा गल करनी जो दे भंडारण के बारे च। जो एक जरूरी फसल है, जरूरी अनाज है, इसका उपयोग खाने पशुआ के चारे च ते कई खाने वाली चीज़ों से जोड़ा से किया जाता है, जोड़ा पौष्टिक भी होंगे तो असा दे स्वास्थ्य वास्ते जोड़ा सा भी लाभदायक मनिया जाता है। इस खातर इसकी गुणवत्ता बनाई रखने वास्ते इसका भंडारण जोड़ा से बड़ा जरूरी है। सही भंडारण करना जोड़ा से बड़ा जरूरी है। जो का भंडारण करने का पहले इसको खरे तरीके कने सुखाना जरूरी होंगे सबना का पहले। अगर जो च नमी रही जाए मनी लिया तो जो की फसल जी इसे स्ताबी खराब हो जाती, खरे कने सुखाई करी ही जो जड़े से खरे तरीके कने साफ करके ही बोरिया ते ड्रमी से जड़े से पाना चाहिए। जित्थों जौ दा भंडारण करदे मतलब कि वह जगह जी सैपी साफ सुक्की ते हवादार होना चाहिए, ते वक्ते वक्ते पर गोदाम दी सफाई भी करदे रहना चाहिए ताकि चूहे ते कीड़े का अनाज जो असा जड़े से बचाई के रखन, अनाज जो कोई नुकसान ना हो। अजकल किसान भाई भैन जड़े से आधुनिक गोदामा दा ते वैज्ञानिक तरीक़ों दा उपयोग भी करा करदे हैं। इस तरीके कन्ने जो लंबे वक्त तक सुरक्षित रहिंदे, सही भंडारण करने कन्ने ही जो दी गुणवत्ता जड़ी है सै भी बनी रहिंदी है। इस कन्ने किसाना जो भी पूरा आर्थिक लाभ मिलता। ते अगर अनाज खराब नहीं है मन लिया तो अनाजे की कोई अनाज जड़ा इसे खराब हो जाता मतलब तो अनाज की बर्बादी जी इसे होंगी, और अगर अनाज जड़ा इसे खराब होने का सब बचाई लेंदे तो अनाज भी बर्बाद होने का जड़ा से बचा रहा। जो का भंडारण करते वक्त असा बोरिया च या ड्रमी च बिच बिच नीम की सुकी पत्तियां जड़ी सह भी पाई सकते, इस तरीके कने भी अनाज जड़ा से बचा रहा। दिखा भैनों कितनी मुश्किल तो बड़ी मेहनत कने असा अपनी कोई भी फसल जी इसे तैयार करते, धुप्पा च, बरखा च, ठंडी च, असा च

एक बारी फिर स्वागत असदी श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। भैणों असां अपने कार्यक्रम विच आखिरी पड़ाव पर पुज गए हैं ते इत्थों असां गल करदे अपनी सखियां कन्ने खाने पीने दी। तां अज असां गल करनी है नींबू शरबत दे फायदे ते उपयोग दे बारे च। नींबू शरबत एक स्वादिष्ट ते स्वास्थ्य वर्धक पीने वाला शरबत है। इस ज़्यादातर गर्मियों ही पीता जाता है। नींबू च विटामिन सी जड़ा से प्रचुर मात्रा च पाया जाता है जड़ा असा दे शरीर जो स्वस्थ रखने च मदद करता। नींबू शरबत असा नमकीन भी बनाई सकते ते इस तो जड़ा से मिठा भी बनाई सकते है ना। इस पीने कन्ने असा दे शरीर च जड़ी असी ताजगी मिलती। इस बनाना भी आसान है। इस नींबू दा रस पानी चीनी ते अपने स्वादे दे साबे कन्ने लून मिलांदे हन। कई लोग पुदीना ते बर्फ भी पांदे। इस कन्ने स्वाद भी बधदा ते होर भी जड़ा से ठंडा हो जांदा। पर ज़्यादा जड़ा ठंडा पीने कन्ने कई बारी गला भी जड़ा से खराब हो जांदा। इस खातर अपने साबे कन्ने ही ठंडा पानी जड़ा से इस्तेमाल करना जरूरी हुंदा। इस ते पीने दे कई फायदे हैं। शरीर जो ठंडक दिंदा, गर्मी का बचांदा, ज़्यादा पसीना आने की वजह कन्ने अगर शरीर च पानी की कमी हो जाए मन लिया तो नींबू शरबत इसको पूरा करदा। इस कन्ने असा दी पाचन क्रिया जड़ी से भी सही रहिंदी, थकान दूर हुंदी ते नींबू च मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने च सहायक होंदे हैं। गर्मियों माणू रोज़ नींबू पानी पीना पसंद करते। मेहमाना का स्वागत जड़ा सा भी गर्मियों नींबू पानी कन्ने ही ज़्यादातर जड़ा से कित्या जाता है। बाहर घूमना जाते असा तो दिखा ज़्यादा गर्मी च नींबू शरबत पीना ही खरा लगता। इसो भी पी करी असा दे शरीर च जड़ा से मतलब कि चुस्ती आ जाती तो असा गर्मी का जड़ा से बच जाते, लू लगने का भी बच जाते। तो गर्मी के मौसम च ठंडी ठंडी चीज़ा ही असा जो अंदर का ठंडक प्रदान करती। तो यह गल हुई नींबू शरबत पर हूँ असा अगे बढ़ना तो सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1 बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।

सके। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म, अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफ़र का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है और हमारी फ्रेंड, हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी, हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ, ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियाँ होती हैं। ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहाँ से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में

मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफ़र इसमें चल रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार न मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की ज़ुबान पर है, जैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत तो अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर सीसी के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG ख़त्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आँखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आँखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले, तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं, ये राजकुमार जी का, ज़रा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे, ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो, बताइएगा। अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सा बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हों जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन हैं।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के ज़रिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ, डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफ़र में डायलॉग की बात हो रही, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफ़र के साथ सफ़र यानी डबल सफ़र करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफ़र के साथ साथ ट्रेन के सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है, और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग, और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग

कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफ़र में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो ज़रूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूँ तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप ज़रा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोल आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 ईयर्स मुगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है तो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं, और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है, और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब

कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं। बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और ज़रा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और इसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे

आए भी हैं। और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज़ मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज़ वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली, मौत तो एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो निरा अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।

0: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
5: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
0: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दांव फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3 बजे हैं, अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार चिट्टा जैसे नशे से निपटने और चिट्टा तस्करी का समूल नाश करने के लिए जल्द ही एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। एंटी चिट्टा मॉडल के तहत प्रदेश में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं इस समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन व स्थानीय शहरी निकायों के लिए 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में वोट डालने के लिए अब 3 दिन शेष रह गए हैं और इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इधर सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध शहर अभियान के तहत सोलन अव्वल स्थान पर रहा है। शांडिल ने कहा कि सोलन को सीवरेज से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है और शहर की पेयजल समस्या सहित अन्य समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा।
1: पूरे पूरे वार्ड देख चुका हूँ और जो लोगों का रुख है वो काफी फेवरेबल है कि भाई हम कांग्रेस की ही निगम बनाएंगे, तो अब तो हमें पूरी आशा है, हमारी जीत लगभग निश्चित है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला नगर निगम में चुनाव प्रचार किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता के पास कांग्रेस को जवाब देने का मौका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले 10 गारंटियां दी थी, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे भी अधूरे रह गए।

0: के पास अगर है कि कांग्रेस को जवाब दे सके, यहाँ से 3 साल पहले जो कांग्रेस ने वायदे किए थे सरकार बनाने से पहले, 10 गारंटियां दी थी, 10 में से एक भी पूरी नहीं हो पाई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी बनना था, उसके काम को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे अनेकों वायदे जो जनता से किए थे वो अधूरे और खोखले रह गए। अब जनता के पास है वोट के माध्यम से करारा जवाब देने।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष आचार्य मदन द्वारा रचित पुस्तक शारदा पीठ सती देश कश्मीर का विमोचन किया। राज्यपाल ने इस पुस्तक को जम्मू कश्मीर की पुरातन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक विरासत का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उन्होंने आचार्य मदन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये शोध आधारित पुस्तक शारदा पीठ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और कश्मीर की पहचान से उसके गहरे संबंध को प्रतिबिंबित कर रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है कुल्लू जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है आशीष शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
4: जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। ड्रेजिंग व खनन को लेकर जिला स्तरीय कमेटी की बैठक उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू के माध्यम से नदियों में बाढ़ के खतरों को कम करने और आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य से नदी तल में ड्रेजिंग और खनन कार्यों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक में उपायुक्त ने जानकारी दी कि समिति का उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम के लिए ड्रेजिंग योग्य क्षेत्रों की पहचान करना, राजस्व दस्तावेज तैयार करना और निर्देशांक सुनिश्चित करना व ड्रेजिंग की जाने वाली सामग्री की मात्रा निर्धारित करने के लिए वन विभाग के माध्यम से स्टडी सुनिश्चित करना है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर द्विमासिक बैठक का आयोजन सहायक आयुक्त जयवंती ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सुरक्षा इत्यादि संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि हवाई अड्डा सुरक्षा व खतरों से बचाव के लिए हवाई अड्डा से 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षी गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा प्रवासियों द्वारा शाराबाई में झुग्गी बनाकर ब्यास नदी में हो रहा प्रदूषण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। देश विदेश में प्रसिद्ध बुनकर सोसाइटी भुट्टिको के सभागार में ठाकुर वेदराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति गुलाब सिंह आजाद मौजूद रहे। स्वर्गीय ठाकुर वेदराम की स्मृति में आयोजित इस समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीलंका के डब्ल्यूईओ हैरथ को वेदराम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। जिला मुख्यालय कुल्लू में पीपल जातर मेला खूब धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों तक चला पीपल मेला देवता गौहरी की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। गौहरी देवता अपने हरियाणों के साथ अपने लाओ लश्कर सहित ढालपुर मैदान में पहुंचे। यहां पर उनके स्थान पर देवता के हरियाणों ने उनकी पूजा अर्चना की और देवता ने देव रीति से मेले का आगाज किया। मेले में शिरकत करने के लिए बाहरी राज्यों से काफी संख्या में व्यापारी आए थे और मेले में जमकर कारोबार हुआ। शाम के समय लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण जन कल्याण सभा का साधारण अधिवेशन देव सदन कुल्लू में भारी संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में समाज के संशोधित संविधान, वैदिक पद्धति, संस्कारों तथा सनातन धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने पर व्यापक मंथन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन गौतम ने की। कार्यक्रम में पूर्व सत्र न्यायाधीश डीडी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि लीला गोपाल शर्मा, भूपेंद्र गौतम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बीते दिनों कुल्लू के ढालपुर मैदान में निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें माता सुदीक्षा महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस समागम में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान व प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता सुदीक्षा महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बीते दिनों लगातार बारिश होने के चलते व तापमान में गिरावट होने के कारण लोगों को एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब, प्लम सहित अन्य फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण किसान और बागवान चिंतित दिखे।
3: प्रभा शर्मा से आप सुन रहे थे कुल्लू जिला की चिट्ठी।
5: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर की आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
7: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफ़र हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
6: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
7: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
6: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
7: बिल्कुल सही।
6: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
7: बिल्कुल।
6: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
7: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
6: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
7: जी, उनके पति चले आए। हाँ, पति के साथ
6: वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहाँ के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
7: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
6: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपये मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
7: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
6: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
7: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
6: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज़ में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
7: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहाँ ज़्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी।
0: दिल
1: और
0: से जुड़ जाते थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न ज़माना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना ज़िंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं हैं, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं अच्छा सा।
1: चलिए,
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो

बिन तरपत मछली कहते नल बिन तरपत पानी हो जल बिन तरपत मछली कहते नल बिन तरपत पानी अर्थात पानी बिना जल

0: मुझे सही होगा। हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वो ही होगा।
1: ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा। हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वही होगा।
2: ओए जम के एक जमा दूं

बात, जब तक जोड़ सलामत, सांस सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले तो

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है। सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए, कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयाँ जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहाँ इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहाँ कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी ज़िंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भाई बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप ज़रूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर ख़रीदारी करना, इनकी कितना आसान EMIs पर किसी चीज़ को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है। अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर ख़रीदारी कितनी सही है। भाई आजकल EMI और UPI का ज़माना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से ख़रीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी ज़िंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है, किश्त देनी है। और उस चक्कर में कई बार आपका सुख, चैन, नींद, खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ जिसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज़ होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैं फिर वही कहूँगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी

0: किस्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किस्तों के बारे में लिखना. अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किस्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किस्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है. उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किस्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी, या तो फिर किश्तों से ही बचना है.
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2000 या 3000 की तो किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है. इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है. बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक पिछले.
0: और वो जो 20 हज़ार की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हज़ार या 35 हज़ार तक की वो पड़ जाए.
1: बिल्कुल.
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए. और इसके बारे में हमारे साथ ही लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूँकि आपने आपके पास ज़्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में ख़रीदने को अच्छा महसूस करते हैं. हालांकि ये नकद ख़रीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं. मासिक भुगतान का ये आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आता है. हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं, तो वही चीज़ें आप ख़रीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफ़ी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं. किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है.
1: बिल्कुल, ये सही कहा. देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है. लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई, किश्तों से ख़रीदारी के कई नुकसान हैं. जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है. यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है. फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है. डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है.
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किस्तों पर खरीदारी करना सही है, जब आपको बहुत ज़्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं. इसलिए किस्तों पर ख़रीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी. और मेरे हिसाब से तो ये ख़रीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है.
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए. वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए. मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ EMI में जाना चाहिए. सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीज़ों से खरीदने से बच सकते हैं.
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे. सुनवा दें?
1: बिल्कुल सुनवाइए.

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ

0: अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबाल कर, नींबू का रस निचोड़ कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको
0: जी
1: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप अब नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: श्रोताओ नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुने यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: फूल लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं?
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हालचाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के

0: टेम्परेचर है मैम,
1: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
0: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
1: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
0: फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल गुनगुनाइए।
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास ही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस दो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: सैफ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारतीय का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, बिल्कुल फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक ले विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और ये नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अलिफ जवर आल अलिफ जवर ए अलिफ तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी।
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप्स पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप्स पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप्स पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या।
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं
1: हाँ?
0: वहां पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों? लेडीज जेंट्स।
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिकद्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है। और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से, तेरी

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जय गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो ना हो।
0: काल जय गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288, 28670288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपने पन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर IPL

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन।
1: जब राम नाम ले ले हर काम।
0: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अभी तो जी लें इस फिल्म के इस भजन के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार व साथियों ने।
1: हो जाए।
0: और ये संगीत है सपन जगमोहन का।

ये संगीत है रविंद्र जैन का और बोल भी रविंद्र जैन के। इस भजन को गाया है लता मंगेशकर ने और ये भजन हमने लिया है दीवानगी फिल्म से।

फिल्मों से भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आइए अब सुनते हैं साधना सरगम व साथियों का गाया हुआ जागृति फिल्म से ये भजन।

दुल्हन बही जो पिया मन भाई, इस फिल्म से ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे हेमलता आवाज साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दशावतार फिल्म से ये भजन के और साथियों का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 और 40 सेकंड हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

0: हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी हाँ, आप पहुँचे हैं स्टूडियो में और आगाज़ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का इस गीत के साथ।
1: Bradley getting ready to bowl to Vijay Shekhawat. Starts his runner, bowls to Vijay. Vijay walks on the pitch and has smashed the ball. It's gone high.

जी कार्यक्रम युवा मंच में इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का। युवा दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर युवा के जीवन को सफलता की ओर ले जाने की शक्ति रखता है। जी हाँ, विषय है अनुशासन और निरंतर प्रयास का महत्व। युवा दोस्तों, जीवन में सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को सच वही लोग कर पाते हैं जिनके जीवन में अनुशासन होता है और जो लगातार प्रयास करना जानते हैं। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि अपने समय, व्यवहार और कार्यों को सही दिशा में संचालित करना भी है। आज का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर है, उसके पास नए विचार हैं, नई सोच है और कुछ कर गुजरने का जुनून भी है, लेकिन यदि इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले तो यह भटक भी सकती है। यही दिशा अनुशासन देता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य तय करना और मोबाइल तथा सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना, ये सभी अनुशासन के ही उदाहरण हैं। जो युवा अपने समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि युवा दोस्तों, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों का संघर्ष और निरंतर प्रयास छिपा होता है।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
7: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
6: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
7: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
6: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
8: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
9: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
8: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया। तो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अनुशासन और निरंतर प्रयास का महत्व। जी हाँ, इस विषय पर बात हो रही है। जी हाँ, हम बोल रहे हैं कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों का संघर्ष और निरंतर प्रयास छिपा होता है। यदि कोई विद्यार्थी एक बार असफल हो जाए और प्रयास करना छोड़ दे तो वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। इसी प्रकार APJ अब्दुल कलाम ने भी कठिन परिस्थितियों में निरंतर मेहनत और अनुशासन के बल पर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। इन महान व्यक्तित्वों का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। युवा दोस्तों, आज के समय में युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं। प्रतियोगिता, तनाव, तकनीक का बढ़ता प्रभाव और जल्दी सफलता पाने की चाह, ऐसे समय में धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन एक दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना ही असली सफलता है।

0: युवा दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को अनुशासित बनाइए, अपने लक्ष्य तय कीजिए, समय का सम्मान कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे निरंतर प्रयास ही बड़े सपनों को साकार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले, आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
6: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
5: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार संगीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मुझा ग्राइंदियां। इसमें आज बातचीत का विषय रहेगा डेयरी का कार्य। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज बातचीत का विषय है मिश्रित खेती। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा अभिनेता विक्की कौशल पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर गजलों का लुत्फ उठाइएगा और रात्रि 10:00 हिमाचली गीत लोक गीत प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10:30 पर चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ बात होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी की जयंती के बारे में बात की जाएगी और रमणीक स्थल खड़ा पत्थर के बारे में बात की जाएगी और पर्यावरण में रात की रानी पुष्प के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में इन

0: चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला व पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डो में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: भाजपा के पास विपक्ष में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न कोई बड़ा मुद्दा। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन। ये 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है ये पार्टी से मतलब है, इसको उस तरह से लड़ा जा, पार्टी के लोग सभी लोग इसमें काम कर, और हमें उम्मीद भी है हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन पहले भी मिला है, और जब सरकार गिराने का प्रयास किया गया उस वक्त भी द्वारा लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत किया, और अब भी लोगों का समर्थन मिलेगा। वोटों की दृष्टि से हमारी सरकार काम नहीं कर, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना, और वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
2: नगर निगम की जो संपत्ति है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से उसके ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ है, और उस घोटाले के कारण से सरकारी खजाने के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है उसका नुकसान हुआ है। धर्मशाला नगर निगम में लोकतांत्रिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। 2 वर्षों से सदन की कोई बैठक नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और जनता की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी।
0: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। हर्ष महाजन ने कहा कि विपक्षी दल इस संबंध में भ्रम और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 होने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार संगीत।

सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सोतन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बोल हैं संतोष आनंद के और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर व साथियों ने। प्रेम रोग से ये गीत आपकी रेडियो सेट्स पर।

घर संसार इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: सदाबहार संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
1: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
5: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
1: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
1: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार संगीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103।

104 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:30 और 33 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंडियां।

0: सैकटरी जी नमस्ते। तो दिखा तुहां अज जेडे अंसै बड़े दिन बाद मिले, कने दसा तुहां भी क्या करा दे।
1: बस जी अहां क्या करना
0: जी,
1: इतना कम कार लाए वहां भी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तुहां कुथू चले हो इस वक्त?
0: जी मैं सैकटरी जी स्कूले जा दी ही ना, पर सोचिया कि पहले जेड़ा ऐसे डेयरी फार्म ते जेड़ा ऐसे दुध ले आवां। तुहां जो पता है कि भ्यागा की सबसे पहली जरूरत अजकल क्या है कि दुध ही दिखा, चाह पीनी है तो दुध चाहिए, चाहे बुजुर्ग हैं तो दुध चाहिए, कने घर च बच्चे हैं तो जो भी दुध चाहिए।
1: बिल्कुल जी तुहां ठीक गलाया कि ना। दिखा अजकल जो ग्रां विच जो है डेयरी का काम जो है बड़ी चर्चा विच है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दिखा बाजी वाह, तुहां बड़ी खरी गल की, पर अजकल जोड़ा ऐसा ये काम हो भी कहना, क्योंकि अजकल खेती है कन्ने कन्ने जोड़ा ऐसा डेयरी फार्मिंग किसानों के ताई जोड़ा ऐसा कमाई का बड़ा भरी सहारा बनी चुकया है। कन्ने कन्ने खेती भी इसका जोड़ा ऐसा बड़ा भरी महत्व है, कने ये खन्ने जोड़ा सानू खरा दुध मिलता है, कने किसानों की आमदनी जी ऐसा बढ़ती है।
1: दिखा मास्टर जी जी पहला क्या होंगे कि दो चार पशु जोड़े ने घर कमे वास्ते रखते थे
0: जी,
1: पर हूँ जोड़ा ऐसा लोगों इस जो है अपना एक व्यवसाय जोड़ा है बनाई तो।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल ठीक गला दे, क्योंकि ये कन्ने जोड़ा ऐसा हर रोज़ साड़ी आमदनी बढ़ती है। खेती है दे कन्ने कन्ने जेड़ी ऐसे फसल जेड़ी खराब हो जाती ही, तो इस कन्ने दिखा ना जी नुकसान भी हो जाता हा। तो अहाँ क्या करते थे हूँ जोड़ा ऐसा एक ही फसल पर अहाँ जोड़े से निर्भर होंगे हे, तो जल उस खराब हो जाती तो अहाँ जो नुकसान हो जाता हा, कने किसान जोड़ा ऐसे करजे हो जाता हा। पर हूँ अहाँ जोड़ा ऐसा दुध बेची ने अपना कन्ने कन्ने जोड़ा ऐसा घरे का खर्चा।
1: बिल्कुल ठीक गलाया तो मास्टर जी। दिखा डेयरी फार्मिंग हर दिन जोड़ा ऐसा आमदनी जोड़ा ऐसा होंगी है इस विच।
0: बिल्कुल।
1: कने घरे घरे अगर कभी कोई नुकसान भी हो जाए ना खेती का,
0: बिल्कुल
1: तभी भी दुध बेची कर अहाँ अपने घरे चलाई सकते हैं।
0: बिल्कुल जी, तो हाँ बड़ी खरी गल बोला दे। कने दिखा इस साड़ियां किसान भैन जड़ियां सह भी हिस्सा ले सकती हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी। कने किसान भैन जड़ियां से पशुओं की देखभाल जड़ी हैं बड़े खरे तरीके ने कर दियां हैं, जियां घर च साड़े मन्ना की छोटे बच्चे होंदे है ना जी, घर च तो बच्चे तुहाड़े भी होंदे दिखा है ना, तो तिना जो खवाना भी पौंदा टाइम दा, नहीं तो क्या होंदा कि है खेलना च मस्त रहिंदे है ना, तो तिना जो पढ़ाना भी पौंदा, कने नहीं पढ़ांगे तो तिना दे भौं तो तिना जो स्कूले भी मत भेजा।
1: बिल्कुल।
0: तीए जड़ा सह साड़ियां किसान भैन सह भी अपने डंगर बछुओं का ध्यान रख दी, तिना जो पाल दी, कने टैमे टैमे पर तिना ते दुध दही घ्यो लैंदियाँ, कने आत्मनिर्भर से बन दियाँ।
1: बिल्कुल ठीक लगा। दिखा मास्टर जी कने अगर हाँ कोई ना कोई किसान जड़ा है सह डेयरी फार्म अगर शुरू करना चाहता है तो तीसो सबसे पहले तो क्या क्या जड़ा है ख्याल रखना चाहिए?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, खरी गल तुहां पुछा दे। सबना ते पहले हाँ जो जड़ी है खरी है नस्लां दे पशु जड़े हैं सह चुनना चाहिए, तिना का चुनाव करना चाहिए। जियां कि साड़ियां गाइयां तिना च साहीवाल गाय है, जर्सी की गाय है या फिर गिर की गाय है। दिखा साहीवाल गाय जी है ना इस रोग जड़े हैं सह घट लगते, दुद्ध की गुणवत्ता जी है सह खरी होंगी। दिखा साढ़े अखे बखे कितनियां है ना
1: जी। बिल्कुल।
0: जी गिर गाय जी है इस गर्मी सहने की क्षमता जी है सह खरी होंगी, दुध भी सह खरा दी। कने दिखा जर्सी दाय तो कुन नहीं जानता। बिल्कुल जी। कने पहाड़ी क्षेत्र च जड़ियां खरियां हैं जियां कि साड़ा हिमाचल जड़ा है इस च घट चारे च भी सह जड़ा है ठीक दुध दिंदियां हैं, कने छोटे किसानों ताई भी सह उपयोगी हैं।
1: पर फिर भी दिखा ना कई बार यहाँ के जड़े किसान साथी हैं सह बिना जानकारी ते पशु खरीदी लैंदे हैं, कने बाद विच सह परेशान भी होंदे हैं।
0: जी सैकटरी जी तुहां तो बड़ियां छैल छैल गल्लां पुछा दे।
1: बिल्कुल
0: जी बिल्कुल, तुहां ठीक गला दे। पशु तो खरीदते वक्त सानू ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, नहीं तो अगर अहां ध्यान नहीं रखगे तो सानू जिहड़ी है परेशानी हो जाणी। पशु जड़े हैं साढ़े स्वस्थ होना चाहिए, ठीक कने खरा खांदे होना चाहिए, ता ही सानू जिहड़ा ऐसा दुध खरा मिलना।
1: जी बिल्कुल। मास्टर जी तुहां बड़ी अच्छी गल दसा देना, पर मेरा क्या पता मन करा दे रेडियो रखे ना बखे, पहले इस रेडियो लाए लैंदे कने इस सुन दे कदा गीत ना, कने फिर तुहां मिंजो थोड़ी देर दसा जानकारी गां दी।
0: जी
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.

0: कन्नै किसान भाइयों की जी आय भी अस बधाई सकते हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, दिखा कने सांझो जी अपनी आमदनी भी बधाना
0: जी
1: चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: ता किसान भाइयों कने भैनों ओवा वैज्ञानिक तरीके अपनाइए, पशुओं का हाँ ध्यान रखिए, कने डेयरी फार्मिंग ते अपनी आय जी है
0: बधाइए।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल।
0: दिखा जी बड़ी अच्छी गल तो हाँ बोली जाते जाते हैं, कन्नै हाँ फिर तो अपने किसान साथियों जो सुनाना एक प्यारा दिया लोक गीत, पर पहले सुनना हाँ एक संदेश
1: जी।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
2: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.

0: किसान साथियों, इसी कन्नै कार्यक्रम मोजा ग्राएं दियां दा समें इत्थे संपन्न हुंदा है। जाने ते पहले दसी दईए तकनीकी सहयोग रिहा सुंदर कपूर दा, कने प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह। हुण सांझो दोनों जो दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजां कराइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात

0: नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज MSV हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, called on Prime Minister Narendra Modi. The meeting took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Earlier, in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer, and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
4: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
3: Dr. S. Jaishankar said there is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. The government has said that effective steps have been taken to ensure the availability of adequate crude oil, LPG and natural gas across the country. Addressing the interministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today, Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that domestic LPG supply across the country remains smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Secretary of Ports, Shipping and Waterways Mukesh Mangal said that two vessels carrying more than 90,000 metric tons of LPG with over 20 crew members crossed the Strait of Hormuz last night and are expected to arrive on the 16th of this month. Mr. Mangal said that the Indian trading vessel MSV Haji Ali, which was on a voyage from Somalia to Sharjah in the UAE, had encountered an incident in Omani waters in the early hours of yesterday.
2: An Indian dhow, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Diba Port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian mission officials and relevant maritime agencies.
3: The Election Commission today announced Special Intensive Revision Phase 3, which will be conducted in phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and all northeastern states except Assam. 3 union territories will also be covered in this phase, NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheeshan as the new Chief Minister of Keralam. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. In Tamil Nadu, AIADMK General Secretary Eddapadi Palaniswamy today met the state governor Vishwanath Arlekar and gave him a petition regarding the faction of AIADMK MLAs led by S.P. Velumani. The former chief minister appealed to the governor to take up the issue with Speaker J.C.D. Prabhakar. Delhi government will start the Mera Bharat Mera Yogdan campaign from tomorrow in line with the Prime Minister's appeal. Addressing the media at the Delhi Secretariat, Chief Minister Rekha Gupta said that under the campaign, all Delhi government offices except essential services will operate on a work from home for 2 days in a week. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. And that is the end of this news bulletin.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो सैकटरी जी राम राम कि किसान साथियों क्या हाल चाल हैं तुहां दे। ओ रुका रुका रुका रुका मास्टर ने जी ओ दिन इन्हें सत दिन दयाले पर मास्टर ने जी राम राम बड़ी जल्दी आई है स्कूले ते
1: सैकटरी जी राम राम कने स्कूले ते बड़ी सताबी नहीं आई है स्कूले ते मैं तां सताबी आई क्यों जो कि अज बच्चियां जो जेड़ा ऐसे खेती दे ने ओए तरीके जेड़े अनसे दसा दी थी
0: हैं बच्चा भी हूँ खेती के नवे नवे तरीके सीखने
1: बिल्कुल जी बिल्कुल क्या नहीं दसने दिखा खेती तो जी है साढ़े गाँव की असली तस्वीर दस दी तो सू जैसे खेती कि बदलाव लियाना चाहिए तो सू जैसे जरूर बच्चों जो भी दसना चाहिए क्योंकि से बचपन से सीख गए तो ही खरा होना
0: बदलाव क्या बदलाव
1: बदलाव ये कि दिखा हुंदा क्या कि अहां सिर्फ जेड़ी ऐसे एक ही फसल लगांदे तो जियां कल्ली फसल लगाई हो तिदे कन्ने कन्ने अहां मुर्गी पालन करन या फिर मछली पालन करन तो इस जो जेड़ा ऐसा मिश्रित खेती गलाया जांदा।
0: ओहो मतलब एक ही कम्मे ते भरोसे नहीं रहना कन्ने मते सारे काम करने भी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल तुहां बिल्कुल ठीक समझे है कने पर ये है ना कि ये काम जालू करने तो बिल्कुल ध्याने ने करने
0: जी ठीक ठीक ठीक मास्टर जी वैसे एक गल है अजकल तो जो किसान है ना सब बड़ा परेशान है कभी बरखा नहीं हो दी कभी सुखा पे याद आ कने उपरे ते कभी कभी खाद कने बीज जड़े सब भी महंगे मिला कर दे
1: बिल्कुल जी सैकटरी जी तुहां बड़ी खरी गल बोला दे क्योंकि हुंदा क्या ना दिखा जालू ये बरखा जी है सह भी साढ़े हथे नहीं है कने सुखा भी साढ़े हथे नहीं है कने बीया की गल दिखा यह होंगी कि पहले तुहाड़े घर च बीज जड़ा निकलता है ना खरा तो तुहां मिंजू दे दिंदे कने मेरे हथे जड़ा निकलता है सर मैं तुहांजू दे दिंदी पर हूँ दुकाना चो बी लैना जा ना तो दो बी मिलते कने पैसे जड़े हैं सर खरे डाई लेंदे बिल्कुल
0: जी तो दिखा अगर अहां केवल गेहूं लगान कने फसल खराब हो जाए तो नुकसान हो जाना कने अगर हां कने कने कोई गाय पाली होए तो दुद्ध ते भी अहां दी जड़ी आमदनी जड़ी से हुंदी रहनी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल तुहां खरी गल बोला दे दिखा यही जी है मिश्रित खेती है जो कणक लाई हो मन से खराब हो क्योंकि ना सू सुखे का पता है ना सू बरखा का पता है तो इसी गला जो जैसे मिश्रित खेती गलांदे
0: अच्छा अच्छा मतलब एक रस्ता बंद हो जाए तो हमारा दूसरा रस्ता जो खुला रहना पे
1: बिल्कुल जी बिल्कुल ये बड़ी खरी गल तुह समझिए यही मिश्रित खेती की सबसे बड़ी ताकत है
0: जी तो मास्टर जी इसके और क्या क्या फायदे हैं
1: जी बड़े बारी फायदे हैं दिखा सब तो बड़ा फायदा तो यह है पहले सानू आमदनी जी असें एक ही चीज़ा तो होंगी थी पर हूँ जी सानू आमदनी कई चीज़ा तो हो जानी कने दूआ जेड़ा साढ़े खेते की मिट्टी जी है सह भी खरी रहनी क्योंकि चलो अह फसला जो बदलते ना बार बार तो इसने मिट्टी जी है खरी बनती उपजाऊ बनती त्रीए जड़ा सा परिवार जो रोज़गार मिलता हूँ क्या कि साढ़े बच्चे बोला दे रोज़गार नहीं है तह जा दे तह जा दे इं क्या होना खरे कोई बीमार शमार भी हो जाए ना तो एक दूआ भी कम संभाली लैंदा
0: गला कि मिट्टी जी खरी रहती तो सह भला कि खरी रही खेती
1: दिखा जी जालू अहां अपना पशुधन पालना है कने तिना का जोड़ा सह गोबर होना है तो तिसते खाद बननी तो जालू से खाद बननी तो है जमीना च पानी तो जमीना का स्वास्थ्य सुधरना क्योंकि जड़िया रसायनिक खादा नहीं पानी है जी कने तिसने क्या होना कि साड़ी जड़ी है खाद तिस जो भी सानू मुल्ले नहीं लैना पौना कने इसने जड़ी है सानू कमाई भी होनी कने कने साड़े खेत भी मजबूत होने कने साड़ा स्वास्थ्य भी मजबूत होना कने दिखा साड़ी जड़ी जमीन है सै भी स्वस्थ रहनी क्योंकि रसायन तिस च नहीं मिलने
0: बिल्कुल जी बिल्कुल कने दिखा मास्टर जी अहां दे ग्रां च भी करा करदा कोई ये आई खेती कि नहीं करा दा कोई अल्ली
1: भाऊ सैकटरी आ एक दे गल तुहां पुछा दे तुहानू नहीं पता है रामू जेड़ा हाड़ा किसान है तीयो नहीं जानदे तुहां
0: जेड़ा सै पहला हमेशा करजे विच रहंदा साई
1: बिल्कुल जी बिल्कुल सैकटरी जी मैं तीदी गल ही कराई दिखा था तालू क्या हुंदा सिर्फ कणक बांदा हा तो जालू सै कणक बांदा तो कदकी फसल खराब हो जानी तो बेचारे दे हत्थे कुछ लगना ही नहीं
0: अच्छा तां ही सै अजकल बड़ा खुशहाल कने घर च खुशहाली नजर ओदी दिसदे विच
1: पता भी है कहो
0: कहो
1: कि कन्ने तिन्नी है कुक्कड़ रखी लियो कुकड़ियां रखी लईयां कन्ने तिन्नी सै गाय भी पाली लिया सब्जियां भी उगांदा बिल्कुल जी बिल्कुल तो तिसने क्या करता है रोज़ रोज़ दुध भी बेचता सब्जियां भी बाजारे च भेजता तो आमदनी तो पोइए कन्ने कन्ने दिखा ना सैकटरी जी बड़ी वड्डी गल तो यह है अपने घरे दा साफ स्वस्थ दुध सै पीया दा खरा देही खा दा खरा घ्यो खा दा खरियां सब्जियां सै खा दा रसायना ते जड़ियां मुक्त हैं
0: जी बिल्कुल दिखा मास्टर जी तो यह अगर इस बीच अहां दी जिहड़ी ग्राएं दी महिलां न तिन्हां दा क्या मतलब अनुदान है या बोली सकदे तिन्हां दा क्या भूमिका है इस
1: दिखा साड़ियां भैणां तो कुसी भी कम्मे च पिछे पिछे नहीं रहता है। इस कमे च कियां पिछे रहन, खास करके सै पशु पालन भी संभाल दी हैं, सै मुर्गी पालन भी करा दी, रसोई भी संभाल दी हैं, बगीचियां भी बना दी हैं, ताई तां इन्हां दे घरे दा खर्चा जिहड़ा सै खरा चल रहा।
0: मतलब कि अहां दीआं जिहड़ीआं ग्रां दीआं महिलां ने सै भी बराबर दीआं भागीदार हैं इहां खेतीआं विच।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो हाँ जिहड़ी है बिल्कुल खरी गल गलाई। कहिंदे अहां जिहड़ीआं सै अपणीआं किसान भैणां जो भी घट नहीं समझणा, बच्चियां जो घट नहीं समझणा, बजुर्गों जो घट नहीं समझना,
0: तो किसान जो और क्या करना चाहिए।
1: सब तो पहले तो उन्होंने अपना यह डर छड़ी देना चाहिए। सब तो पहले तो इन्हों जो एक छोटे स्तर पर काम करना चाहिए, एक दो पशु रखन, थोड़ी सब्जी उगान, जैविक खाद बनान, जीरो बजट प्राकृतिक खेती जो अपनान। धीरे धीरे किसान जोड़ा से अपने आप फर्क महसूस करना, कने जी है सह विभाग से भी तीन मदद ले।

0: किसान साथियों हूँ अहाँ के टियाले दिखा एक किसान साथी आए हैं कहना इन्हें कहने गल करा कर दे अहाँ के टियाले बड़का चाचू तो वह सुनते हैं कि गल करा कर दे
1: जी।
2: किसान साथियों जी कि तुसा जानते हैं कि टियाले के माध्यम कहने असं तुझे तक ढेर सारी जानकारियां कहने भी पहुँचाते हैं चाहे से जानकारी डॉक्टर की होए विज्ञानिका की होए या फिर असद उन्नत किसान भाई की होए तो अज इस कड़ी साढ़े कने जुड़े ने एक उन्नत किसान भाई तो जी कुछ दे बोला दे तुसा
3: जी नगरी ते बोले सर अनिल
2: अनिल जी खेती बाड़ी का काम कर दे ना
3: हाँ जी सर हाँ जी
2: अच्छा तो असद सुनने वाले ये दसा कि कितनी करी करनाल जमीन है तुसा बल
3: बी करी करनाल लेकिन दस करी करनाल चा बिजाई कर दे दस करनाल खाली छड़ी सर
2: अच्छा और ये जेडी दस करनाल च तुहा बिजाई कर दे ना
3: हाँ जी सर
2: ये सारी मतलब पानी लागे जमीन
3: हाँ जी सर बिल्कुल जी पानी लग गया
2: और ये जेडी दस करनाल है इसका क्या कर दे मतलब एक घासणीता इसका प्रयोग कर दे या फिर कुछ और लगाया मतलब खड़ैत्र है या फिर
3: सर दस करनाल जेडी हां खड़ैत्र यूज करा करने बाकी जेडी दस करनाल से बैंड है
2: अच्छा ता इस वेले क्या कुछ काम काज लगाया तुसा अपने खेत खिलाने च कटाई दा काम चले होना कणक कटाई दा
3: सर कणक दी साडी कटाई सर ना
2: अच्छा
3: कने हुन अगली हां फसल दी तैयारी करे दे
2: अच्छा कटाई दा ले काम चले की करी बैठे हो
3: सर करी बैठे सा
2: ता ए पूरी दी पूरी दस करनाल च तुसा कणक लगाई थी कि और भी लगाया था कुछ सब्जी वगैरह
3: सर इस विच सर साडी जो भी वए थे
2: जी
3: करनाल च एक जो थे कने बीच आलू थे और थोड़ी जगह च अद्धी करी करनाल च साडा लसन प्याज जेड़ा साडी घरेलू जेड़ा
2: अपने घर दे इस्तेमाल ताई
3: हां जी हां जी सर
2: अच्छा तो ये दसा कि ए आलू कितनी करी करनाल च लगाए है अद्धी करी करनाल च या फिर करनाल च
3: नहीं अद्धी करनाल च सर क्योंकि ये बड़ी बीज महंगा था कने सर हुन एक्चुअली सूरा ही जाड़ हुई हो
2: जी जी जी जी
3: तो इस कारण थोड़े घटाई तो हुन सिर्फ एक ही अद्धी करी करनाल च अपने गुजारे मुताबिक अपने खाने गुजारे सर
2: अच्छा तो लगभग आठ करी करनाल च तुहा कणक लगाई थी
3: सर आठ ते भी थोड़ा घट जी क्योंकि चलो जो था ना जी बीच हाँ
2: जी जी
3: तो जो डेढ़ कनाल जो चली है कने अद्धी कनाल चालू चली है
2: जी
3: दो कनाल कने बाकी अद्धी कनाल जी लसन प्याज वगैरह तो कोई छह सात कनाल च सर साड़ा ये था
2: कणक का बी कुछ दे लिया तो घर दा लगा दे
3: कणक का बी अपना भी रखा हुंदा था ना
2: जी
3: मैं पिछली बारी बंसी किस्म रखी थी देसी देसी किस्म जी हम मंगाई थी मैं साड़े फार्मर है ना
2: जी जी
3: राजस्थान ते मंगाई थी देसी इस विच ऐसा की हां दा फर्स्ट टाइम हां लगाई लेकिन जेड़ा कंपैरिजन हां दूई कणक सो कीता ता थोड़ा जेड़ा सिल्ला थोड़ा इदा प्रोडक्शन थोड़ी घट रही
2: जी जी जी
3: पर थोड़े लगा कि भई अगर इसे ठीक ढंग सो कि अगर हां इस बारी थोड़े मौसम भी छड़ी आ बीच
2: जी जी
3: उस दी वजह से हां जो थोड़े दे इदी प्रोडक्शन घट आई सर
2: और जेड़े घर दा अपना तोहां बी लगाया था उदी पैदावार कदे रही
3: उदी सर ठीक बड़ी है उदी ठीक रही हां जो
2: अच्छा
3: अंग्रेजी खाद कोई पांदे ने स्प्रे कोई होनी ता ना ही कोई ऐसा है कि कोई पैदावार बढ़ाने ताई कोई यूज करदे जेड़ा सिंपल साडा ए है अपना देसी गोबर वगैरह ते सो भी ता हां दा लगभग जियां दुई मैल वगैरह अंग्रेजी जी खाद पाई करी अगर जियां 10 गुना प्रोडक्शन होता है साडी 6 ते 7 गुना रही साडी 6 करी गुना रही हां जी यानी कि पर है कि भई बीमारी नहीं आलू जे प्लस पॉइंट है कि साडे च बीमारी कने वेट ठीक है आलू दा

0: बड़ा साइज भी नहीं कने बड़ा छोटा भी नहीं सर।
1: जी तो आलू तो हाँ क्या घर दे गुजारे अनुसार लगाते या फिर इन्हें बेचते भी हैं?
0: सर पहले तो हाँ बेचते थे लेकिन ऐसा कि हुण अपने गुजारा ही कुछ अपने यहाँ धीयां दियाणियां दे भी दिंदे।
1: अच्छा रिश्तेदार च बंडी लेंदे ना।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी कने इससे पहले चलो चार पांच क्वांटल लगांदे तो हाँ बेची भी लेंदे थे लेकिन हुण आस्ते आस्ते नहीं तरह ज्यादा टाइम भी दे पांदे कने हुण।
1: अच्छा ता जी हां तो हां मतलब कणक लगांदे ने और लहसुन
0: हाँ जी
1: प्याज जेड़ा अपना घर दे अनुसार लगांदे ने।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा ये जितनी भी सारी खेतीबाड़ी है तुसा इस च खाद कौन दी प्रयोग करदे ने?
0: सर साड़ी खाद हाँ देसी यूज करदे हाँ जी हाँ। मैं जिहदा प्राकृतिक जिहदा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दा मैं एक मास्टर ट्रेनर भी है सर
1: जी
0: अपनी
1: जी जी
0: पंचायत हाँ ट्रेनिंग लेकर रिसीवर लेकर हुण अपना जितना भी सारा नेचुरल फार्मिंग है प्राकृतिक तरीके से जहाँ कोई भी केमिकल खाद वगैरह नहीं पा रहे सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये
1: अच्छा
0: है कि प्रोडक्शन जरूर घाटा बहुत ही हल्की नहीं बट ये है कि सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जहर नहीं खाते इतना करिए हाँ जो है।
1: जी जी इदी सिखलाई तो हाँ कुछ ली थी?
0: हाँ सर मैं ले रही 2018 च साढ़े सुभाष पालेकर जी पालमपुर आए थे
1: जी जी
0: और हाँ इस हर पंचायत हाँ मैं भी इसी विच 7 दिन का सारा प्रशिक्षण था प्रशिक्षण शिविर था
1: जी जी
0: उसके बाद फिर मैं गया कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र भी उत्थे हाँ जिथों साढ़े आचार्य देवराज जी साढ़े राज्यपाल थे पहले
1: जी जी
0: हाँ फार्म चा विजिट किया हाँ तिथु भी तिथु देखा कि किस तरीके नैचुरल फार्मिंग होती और क्या क्या बेनीफिट है तो इस से देखी करी हाँ काफी प्रभावित होए गए तीस देखी करी मिले भी क्यों इतना ज्यादा जहर पाई करी अपनी आपे जो भी खराब करा जाएगा अनाज तो खराब करा ही कर दे और इस तरह फिर यहाँ उसके बाद हम नेचुरल फार्मिंग शुरू करी थी।
1: अच्छा मतलब 2018 के बाद वहाँ मतलब जीरो
0: हाँ
1: वेस्ट
0: जी
1: खेती दी तरफ आए मतलब।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल
1: अच्छा तो उदे पहले मतलब जेड़ा सी प्रचलन चले था अंग्रेजी खादा था उस सब बेने कर
0: बिल्कुल
1: दे।
0: सर। हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा ता ए ता अनिल जी देखा कि असा दे जेड़े विशेषज्ञ ने उन्हां दा भी यही गलाना है कि जियां शुरुआती दौर पर अहां अगर जियां शून्य लागत खेती जो करदे ने
0: हाँ
1: ता
0: जी हाँ जी
1: पैदावार च शुरू च थोड़ी दी मतलब
0: गिरावट आउंदी सर
1: हाँ लेकिन धीरे धीरे बोलिया से कवर हो
0: बिल्कुल
1: जानी।
0: सर कि 3 साल के बाद जल साढ़ा 3 साल कंप्लीट हो जाता उसके बाद एट पार चली पाती कहने सर अगर थोड़ी बहुत अगर सर घट रही है तो मैं तो समझ दे जहर खाने का बेस्ट है कि घट खाया माड़ा नहीं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ता ये दसा कि जलू तुहां मतलब सिखलाई ले ता इस च क्या कुछ चीजा तुहां जो दसियां कि कियां कियां इदी जड़ी चीजा कैन बेसी बनानी है ना?
0: हाँ जी सर इस विच सार दे पहले तां जो इस विच हां बीज अमृत बनाना सीखिया कि बीज जो हां उपचारित करना है कियां करना है
1: जी
0: उसके बाद हाँ जीवामृत जी हाँ फसल लगाएंगे उसके लगाने के 1 दिन के बाद फिर हाँ जीवामृत स्प्रे करनी है फिर जब फसल तैयार होती है अगर बीच कोई अगर बीमारी वगैरह लगती है
1: जी
0: तो तीस बीच हाँ पिछले कि हाँ रोकना है बीमारी तो उससे आया फिर हाँ खादा दुनिया सीखिया जी हाँ नीम अस्त्र बनाना सीखिया
1: जी जी
0: फिर खट्टी लस्सी स्प्रे इस तरीके हाँ यूज करना सीखे और बनाया भी खुद और अपने मैं अपने फार्मर जो जेड़े साडे ग्राएं च नेर डेर में तिना जो भी एडवाइज करता कि जहर खाने दे बैठ फिर हाँ तिना जो बनाए के भी दसिया।
1: जी
0: हाँ जी
1: अच्छा ता देखा कि जी शुरू च तुहां शून्य लागत प्राकृतिक खेती कीती
0: हाँ जी
1: और उदे पहले तुहां करदे थे जी अंग्रेजी खादा दा प्रयोग करदे हे
0: हाँ जी हाँ जी
1: ता जालू जेड़ा उत्पाद पैदा होया था शून्य लागत प्राकृतिक खेती कने और अंग्रेजी खादा दा जेड़ा उत्पाद पैदा हुंदा था ता उस च तुहां जो क्या अंतर पाया गया मतलब कोई स्वाद च अंतर पाया गया या फिर एक
0: बिल्कुल सर सबसे पहले सर मैं 2-3 चीजें जेडी एक तो मैं इन्हें देखा अनाज का वेट
1: जी
0: क्योंकि तो जिस जगह च मैं 10 कनाल च नहीं करता मैं करता 5 कनाल ही ऑर्गेनिक फार्मिंग जेडी प्राकृतिक खेती है
1: जी जी
0: तीन मैं एक देखिया कि जानी हाँ कणक लगाई तो तीस बीच सारा जेड़ा वेट था क्योंकि तो जल हाँ अमूमन ग्रां जहाँ लोग रेटे बनाते
1: जी जी
0: तो जल हाँ सर चुकी तो 30 कणक का मुझे मैं खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि सीधा जेड़ा वजन था अनाज का जेड़ा वजन एक तो सर वजन ठीक था कंपेरिजन जेड़ी दूई साड़ी कमर जूई जेड़ी है केमिकल वाले जो अनाज था तीस से बैटर वेट था
1: जी जी
0: दूआ तो फांडा घट था जियां ऑर्गेनिक जो जियां दूइया केमिकल वाले इसे तीन फांडा का ज्यादा होना फैलाव ज्यादा होना लेकिन तीन जो ऑर्गेनिक का जो जैविक का था तीन फैलाव घट था एक चमक अनाज चमकता है क्योंकि हाँ तीस बच्चे हाँ सप्त धान्य अंकुर की स्प्रे की थी तो तीस से मुझे लगा कि जोड़ा हाँ सीखे पता क्या प्रैक्टिकल भी किया तीस से अनाज की साइनिंग बड़ी अच्छी रही और सबसे बड़ी गल रही कि टेस्ट जलो हाँ तीन आटा जियां पियाया सैपरेट आटा पाया था जो अनाज का टेस्ट है दूए के मुकाबले बड़ा अच्छा लगा जी।
1: जी तो बड़ी अच्छी गल है कि तुसा मतलब शून्य लागत प्राकृतिक खेती जो अपनाया और अच्छे इदे जेड़े परिणाम के भी रहे हैं मतलब थोड़े हिसाब ने।
0: हाँ जी सर बिल्कुल सर क्योंकि सर आज देखा जाए ना आज हॉस्पिटल इतनी भारी लाइन लगी है तो हर जगह देखे जाए तो बीमारियां बीमारियां तो कुछ हाँ साढ़े खाने पीने ज्यादा कुछ नहीं चलो अपना खाना पीन तो अच्छा रख ही सकते सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहना दूजी गल आज तो पता यूरिया खाद के इतने रेट हैं 12-32-16 दिन रेट बधी चुके कि एक नॉर्मल आदमी की पहुंच दे बाहर हो चुके
1: जी जी जी जी
0: इससे बेटर है कि 10 कनाल च मत करा मैं।

0: जिमीदारा जो मैं अपने जिमीदारा जो भी ये एडवाइज करता कि 10 कनाल च मत करा, लेकिन 2 कनाल ते करा कि नहीं स्टार्ट था करा।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखा कि मान लो साढ़े वाले 20 कनाल जमीन है, अगर हाँ 2 कनाल दे शुरू कर देता धीरे धीरे से 20 कनाल च अपने आप मतलब एक ऐसा दौर आई जाना कि 20 कनाल च भी समझो मतलब।
0: बिल्कुल सर, साढ़े आदत च पई जाना ना सर, हाँ जो देखा ना हूं इतने साल से हाँ जो आदत पई गलते जाने जाते भी टाइम लगना है, तो मैं तो कई बार हाँ जिमीदार अगला जी ये तो फाके मरने वाली गल है, मतलब फाके नहीं मरना लेकिन एक शुरुआत करा, मैं नहीं कहता तो 10 कनाल च करा लेकिन 2 कनाल से करा, अद्धी कनाल से स्टार्ट करा या अपने किचन गार्डन से स्टार्ट करा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: फिर थोड़ा देर कि अज की डेट च लोग ऐसा नसर की हूं तो हाँ चलो साढ़ा एक संसाधन भंडार का चली पे हूँ, कुछ ऐसे फार्मर जिन्हें गाय भी नहीं है बोलते हैं जो किचन गार्डन जो जी स्प्रे अनिल जी, तो साढ़े कुछ ऐसे मेरे फार्मर मैं तिन्हे संसाधन भंडार चलाया, तो तिन्हते हाँ तिना जो घन जीव अमृत है या जीव अमृत है या नी मास्टर वगैरह जो बने तिना सप्लाई कराई ने, तिना बिकी बनता समान कहने लोगों जो अच्छी चीज मिली जाती।
1: अच्छा अनिल जी, तुम जी गला है कि तुम एक मास्टर ट्रेनर भी ने शून्य लागत प्रकृति खेती के बारे।
0: हाँ जी,
1: ग्रां च सारे जेडे किसान ने मतलब शून्य लागत खेती करते हैं।
0: बिल्कुल सर, हाँ अखे पखे 18 परिवार
1: जी,
0: 18 परिवार जो मैं तेना हाँ टेम्पो ऑर्गेनाइज किया, साढ़े BTM भी आए, मैं तेना जो किया पहले दसा ना कर बे बोले अड़े इतना कौन बे झंझट च पिटे, फिर मैं तेना एक गला गया मेरे तुम रिजल्ट दिखा, फिर इसे चल हाँ तेना जो बनाना तो अभी तो अपना टाइम भी लगाया, साढ़े BTM ने भी आया सभी टाइम घटी करी आए, ATM जेडे से हम मिली करी, फिर इसे हूं ऐसे किचन गार्डन से स्टार्ट हुई, बट ऐसा है कि थोड़े लोग सर की आदत है ना पुरानी ते थोड़ा दिया किना जो टाइम टाइम जरके जगाना पड़ता भाई जीव अमृत बनाई लिया नहीं मिंजो ते ले गया।
1: बिल्कुल,
0: एटलीस्ट चलो किचन गार्डन ते स्टार्ट करा दे
1: जी,
0: ये खुशी है कि धीरे धीरे परिवर्तन होता, लेकिन सर इन चीजा अच्छी चीजा जो फैलने टाइम लगना क्योंकि लोगों की जी आदत है इस टाइम में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: सत्या जो चेंज करना तो मतलब पता ही सर।
1: और देखा कि काफी असर जेडे किसान भाई कहने मतलब भी कुछ बड़े बड़े स्तर पर भी खेती बाड़ी करते हैं और छोटे स्तर पर भी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन लगभग फिर भी से जीरो वेस्ट खेती की तरफ आ करते हैं, और उन्होंने भी यही गलाना है कि इसका जोड़ा परिणाम के भी बहुत ही अच्छा है, और जोड़ा भी उत्पाद शून्य खेती करने पैदा हुआ करता है से असद से टाइम बहुत ही बांका है मतलब।
0: हाँ जी सर, बिल्कुल सर भी।
1: और इधर अलावा जी हाँ तो जी एक खेती बाड़ी है ट्रैक्टर कहने करते होने।
0: बिल्कुल हाँ, हूं तो ट्रैक्टर रखे हाँ छोटे ट्रैक्टर हालांकि हाँ जो सुभाष पालेकर जी बिल्कुल मना ही करा कर ट्रैक्टर यूज करा सभी एक किस्म का भी खतरनाक है क्योंकि जी उपजाऊ शक्ति है जी जमीन सभी बैटर है कि तुम, लेकिन अज की डेट चलो किरातिया सौ गल भी की सर भी अज की डेट बाल कोई नहीं पड़ा दे क्योंकि लोग हूं आस्ते आस्ते इन चीजें छड़ा रहे, तो फिर हाँ देख लगे चलो छोटा ट्रैक्टर फिर हाँ छोटे ट्रैक्टर सौगी हाँ करते पर भाई अच्छे रिजल्ट आने सर।
1: अच्छा, तो यह ट्रैक्टर तो मतलब अपना रखे या फिर किराए पर लेंगे?
0: सर किराए पर एक्चुअली साढ़े घरे जी मेरे भतीजा ना हाँ मिली जुली करी हाँ एक ट्रैक्टर रखे।
1: अच्छा,
0: 10 कनाल साड़ी है 10 कनाल तीन दी तो हाँ अपने गुजारा अपने ताए रखे है तो सौगी वाह लेंगे।
1: अच्छा, और तो हाँ पशु क्या क्या रखे घरे?
0: हाँ सर 2 गाय रखी पहले, लेकिन हूं अजकल एक ही गाय है तो थोड़ा हाँ रखी भी हाँ पहले तो जर्सी लेकिन हूं बदली हाँ थोड़े हूं रखी दोगली टाइप जी साड़ी पहाड़ी गाय तीस च।
1: अच्छा,
0: तो ती तो गोहा कने गूंतर यूज कर लेंगे जीव अमृत ताए कने घन जीव अमृत ताए यूज कर लिया दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दूध भी ठीक है और प्लस दे रिजल्ट भी अच्छे
1: जी जी। अच्छा, तो इदे अलावा जी हूं अगली जी फसल आनी है धान की,
0: हाँ जी सर
1: उदी क्या कुछ तैयारियां करा करते हैं तो हां मतलब क्या
0: एक सर साडा मेन तो हां करदे श्री विधि वाला ट्रीटमेंट करी करी पहले रडियाली गलांदे पनीरी देंदे उस ते बाद फिर ट्रांसप्लांटिंग वाला काम चले पौंदा जुलाई च। दिक्कत सिर्फ पौंदी कि थोड़ा जून जुलाई च बरखा ऐसे हुंदी नहीं तो साडी ट्रांसप्लांटिंग लेट हो जाती
1: जी जी,
0: इस तरह जो देसी किस्म रखना पौंदी है तो मार्केट च हाइब्रिड भी लेकिन हाइब्रिड अगर टाइम ही लगे हैं तो ठीक है नहीं तो निसरदा भी नहीं सर।
1: अच्छा,
0: और जो दान सैरी तक निसरी है शायद दान ठीक है अदरवाइज सैरी के बाद ठंड पे टेंपरेचर डाउन हो जाता फिर दान से सिर डी जाता किसान निसरदा, इससे बेस्ट है कि अपनी देसी अगर हाँ वैरायटी होता दी बेस्ट है सर।
1: जी जी जी,
0: अगर से जुलाई च लगती है 15 जुलाई तक भी लगी जाती तभी इसे साड़ी सितंबर 15 तक से निसरी जाती साड़ी सर सैरी तक।
1: अनिल जी सर दे अच्छी गल लगी कि तुसा मतलब बिल्कुल ही शून्य लागत प्रकृति खेती कहन भी करा करते हैं और अपू तो करा करते हैं, लेकिन और भी जेडे किसान उन्हें जो भी जागरूक करा करते हैं कि इदे क्या क्या समझो फायदे और क्या क्या नुकसान।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल, बिल्कुल
1: गलबात करने ताई शुक्रिया जी।
2: किसान साथियों हाँ सुनी एक गलबात कने हुन वक्त है ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਥੋਕ ਭਾਅ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਲੂ ਰਿਹਾ 8 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਪਿਆਜ਼ 18 ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 12 ਤੇ 16 ਰੁਪਏ, ਲਹਸੁਨ 100 ਤੇ 120, ਅਦਰਕ 120 ਤੇ 130, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 14 ਤੇ 16, ਅਰਬੀ 40 ਤੇ 42 ਰੁਪਏ, ਖੀਰਾ 10 ਤੇ 14 ਰੁਪਏ, ਮਟਰ 50 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 25 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ 8 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ, ਬੈਂਗਣ 10 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕੱਦੂ 10 ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਮੂਲੀ 10 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ, ਟਿੰਡਾ 20 ਤੇ 25 ਰੁਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕ ਰਿਹਾ 25 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਰਹੀ 35 ਤੇ 40, ਧਨੀਆ ਰਿਹਾ 40 ਤੇ 50, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡੀ ਰਹੀ 25 ਤੇ 30, ਘੀਆ ਰਿਹਾ 10 ਤੇ 13, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਲਾ ਰਿਹਾ 15 ਤੇ 20, ਫਰਾਸਬੀਨ ਰਹੀ 50 ਤੇ 60, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜਰ ਰਹੀ 20 ਤੇ 25, ਮਸ਼ਰੂਮ ਰਿਹਾ 160 ਤੇ 160
2: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਬ ਰਿਹਾ 110 ਤੇ 140, ਕੇਲਾ 40 ਤੇ 50, ਅਨਾਰ 120 ਤੇ 140, ਅਨਾਨਾਸ 40 ਤੇ 50, ਅਮਰੂਦ 70 ਤੇ 80, ਮੌਸਮੀ 70 ਤੇ 80, ਕਹਿੰਦਾ ਪਪੀਤਾ ਰਿਹਾ 35 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰਿਹਾ 25 ਤੇ 50। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਾਹਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ
2: ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਫ
3: ਜੀ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 360,800 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के सकारात्मक परिणाम आए सामने। एनसीबी ने सरकार से मांगा विवरण। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ भारतीय हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और

0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ सभाओं व रोड शो के जरिए मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इधर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: भाजपा के पास विपक्ष में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न कोई बड़ा मुद्दा। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन। ये 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है, ये पार्टी से मर गया। इसको उस तरह से लड़ा जा, पार्टी के लोग सभी लोग इसमें काम कर, और हमें उम्मीद भी है हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन पहले भी मिला है, और जब सरकार गिराने का प्रयास किया गया उस वक्त भी द्वारा लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत किया, और अब भी लोगों का समर्थन मिलेगा। वोटों की दृष्टि से हमारी सरकार काम नहीं कर, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना, और वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
2: नगर निगम की जो संपत्ति है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से उसके ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ है, और उस घोटाले के कारण से सरकारी खजाने के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है उसका नुकसान हुआ है। धर्मशाला नगर निगम में लोकतांत्रिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। 2 वर्षों से सदन की कोई बैठक नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और जनता की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी।
0: प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने पालमपुर नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार व कांग्रेस शासित नगर निगम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पालमपुर नगर निगम भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनता से धोखे का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के कुशासन का पूरा सच जनता के समक्ष लाएगी। इस बीच भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर के नाम पर जनता को गुमराह किया। उन्होंने आज नाहन में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं।
3: जिन वादों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 3.5 वर्ष बीत गए लेकिन एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर। ये बात करते थे नए दौर की, ये बात करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, ना वो नया दौर आया ना वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, अपितु व्यवस्था का पतन जरूर हो गया। तो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, वो चाहे महिलाओं से किया गया 1500 का वायदा था, या युवाओं से किया गया 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा था, या हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, लेकिन ये वायदे 3.5 वर्षों में हवा हवाई हो गए।
0: प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, पालमपुर, मंडी व धर्मशाला सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में 17 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन 17 मई को ही की जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। इन 51 शहरी निकायों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR

0: कोला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए और इसके तहत चिट्टे में संलिप्त अपराधियों के साथ साथ पंचायत स्तर पर मैपिंग की गई है। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार चिट्टा जैसे नशे से निपटने और चिट्टा तस्करी का समूल नाश करने के लिए जल्द ही एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। हर्ष महाजन ने कहा कि विपक्षी दल इस संबंध में भ्रम और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों को मिलने वाली हर साल की 10% वेतन वृद्धि इस बार रोक दी गई है, जिसे मई महीने की सैलरी के साथ बहाल करने की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। हड़ताल की चेतावनी के बाद नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान हड़ताल पर जाना उचित नहीं है और इससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो प्रशासन एस्मा के तहत कार्रवाई करेगा। अदालत के आदेशों के तहत शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कहा है वे पिछले 18 वर्षों से शिमला शहर को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें डराया और दबाया जा रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी भूख हड़ताल तक का रास्ता भी अपना सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। भाजपा द्वारा आज सोलन में आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हुआ अभूतपूर्व विकास और भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रही है। डॉ सिकंदर कुमार ने उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग से मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने नगर निगम सोलन में होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 360,800 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के सकारात्मक परिणाम आए सामने। एनसीबी ने सरकार से मांगा विवरण। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ भारतीय हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:10 हुए हैं। समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अभिजीत के गाए इस गीत के साथ।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक का गाया ये गीत।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: अभी आप सुन रहे थे नवराज हंस और पलक मच्छल व साथियों का गाया हुआ ये पंजाबी गीत। आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध संगीत का सबरस। तो कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं सचेत टंडन का गाया ये गीत।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

सुखविंदर सिंह के गाए इसी पंजाबी गीत के साथ आज के विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:53 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे बेपरवाह साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में योद्धा फिल्म से ये देशभक्ति गीत, कभी खुशी कभी गम इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपके रेडियो सेट्स पर। आवाजें हैं उषा उत्थुप और कविता कृष्णमूर्ति की, और संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: पर आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग

0: को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ

सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमरीका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान

0: 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.

दोस्तों, आज के सविशेष अंक में हम बात करेंगे हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपनी मेहनत, सादगी और शानदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय अभिनेता विक्की कौशल की।

विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। उनके पिता श्याम कौशल हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध एक्शन निर्देशक और स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं। फिल्मी माहौल में पड़े बड़े विक्की ने बचपन से ही सिनेमा की दुनिया को बहुत करीब से देखा। हालांकि शुरुआत में उनका रुझान इंजीनियरिंग की ओर था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, और लेकिन उनका मन अभिनय में बसता था। अपने सपनों को पहचानते हुए उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और थिएटर तथा अभिनय कार्यशालाओं के माध्यम से अपने हुनर को निखारना शुरू किया।

छोटे कामों से कि उन्होंने फिल्म गैंग्स ऑफ बसीपुर में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसके बाद वर्ष 2015 में आई फिल्म मसान ने उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनके भावनात्मक अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। इसके बाद विक्की ने कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें राजी, संजू और सरदार उद्धम जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन वर्ष 2019 में आई फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का उनका प्रसिद्ध संवाद हाउस द जोश आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

विक्की कौशल अपनी सादगी, मेहनत और अनुशासित जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि व्यक्ति में प्रतिभा और समर्पण हो तो वह अपने दम पर सफलता प्राप्त कर सकता है। आज के युवाओं के लिए विक्की कौशल प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है।

दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। विक्की कौशल का जीवन इसी संघर्ष और सफलता की कहानी है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे अभिनेता विक्की कौशल पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से कुछ गजलें। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में ये गजल। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की गाई ये गजल।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति तलत अजीज की गाई ये गजल आपके रेडियो सेट्स पर। गजलें अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेणुमन कोटिया के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गजलें, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीत, लोकगीत। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति मंजू जी श्रीवास साथियों की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लेख रामपाल की आवाज़ में ये लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गंभीर देवी का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे गंभरी देवी व साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति वर्षा कटोच की आवाज में ये लोक गाथा।
1: बहुत खूबसूरत थी धोबी ने।
0: हिमाचली गीत लोकगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: धोबी के लाख मना करने पर भी धोबन नहीं मानती और घर

विशाल और पठानिया के गाए इसी लोकगीत के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 और 26 सेकंड हुए हैं। समय है चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों के गीतों का। तो आगाज करते हैं मेरा साया फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, संगीत केवल सुरों का मेल नहीं होता, बल्कि यह दिल की उन भावनाओं को आवाज देता है जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं होता। जब कोई मधुर धुन कानों में घुलती है तो दिल अपने आप किसी खास की यादों में खो जाता है, कुछ इस तरह से।

दोस्तों, प्यार में संगीत का महत्व इसीलिए भी खास है क्योंकि कई बार एक गीत वो कह जाता है जो हम सामने होकर भी नहीं कह पाते। किसी की याद में सुनाई देने वाला गीत, बारिश की शाम और धीमी हवाएं, बस यही तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन जाते हैं।

0: अनपढ़। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। संगीत दिया था मदन मोहन ने और गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान ने। और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिली जुली आवाजों में दीवार फिल्म से।
1: कह दूं तुम्हें,
0: संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है?

रजिया सुल्तान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत। बोल थे जान निसार अख्तर के और संगीत दिया था खय्याम ने। और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी व साथियों के मिलीजुली आवाज़ों में ब्रह्मचारी फिल्म से।

कभी कभी हम बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सह जाते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने होते हैं वही दिल में रह जाते हैं। और ये रही चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति, मोहम्मद रफी की आवाज में नई रोशनी फिल्म से ये गीत। संगीत दिया है रबी ने।

0: मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka.

आज का ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।